मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि तीसरी, तदनुसार 24 जून 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का।
1: ओ 10 वर्षीय बालक, एकटा पुस्तक, संभवतः डैनियल डिफोक लिखल रॉबिन्सन क्रूसो वा एसपक फेबल अनक हेतु घर सँ 20 किलोमीटर दूर अपन परिचितक ओत जा रहा छल। पुस्तक किनक लेल ओकरा पास धन नहीं छलैक, तैं ओ मांग चांग के पुस्तक पढ़े छल। विद्यालय जबाक तो ओकरा से हंते लागल रहली, कारण ओकरा पिताक पास धन नहीं रहेक। ओ सर्वथा साधनहीन छल आ परिवार बेस नमहर छलैक, जकर पालनक गुरुतर भार पिता पर छलैक। भरि दिन ओ अल्पवयस्क बालक पिताक संग शारीरिक श्रम करे छल, कखनो नदी में लकड़ी घिचबा में, कखनो तमाकुलक खेतक पटौनी करबा में, तो कखनो बरदक हेज के हाँकबा में। साँझ में पलखित भेटे तो कोनो ने कोनो पुस्तक लऽ कऽ अध्ययन करे, ओतो प्रकाशक कोनो व्यवस्था नहि, धधकैत आगिक प्रकाशी ओकरा लेल दीप छलैक। देवाल पर कोयला सँ लिख लिख ओ गणित सीखल करे, व्याकरण ज्ञान सेहो ओ तहिना प्राप्त कलक। 9 वर्षक अवस्था में ओकरा माताक देहांत भ गेल रहैक। माताक स्नेह सँ वंचित कठोर श्रम में रत ओ परिवार पालनक भार वहन करैत स्वाध्याय द्वारा आत्मोन्नति में लागल रही छल। स्वाध्याय आ कठोर परिश्रम अपन चमत्कार देखौलक आ 27 वर्षक अवस्था में ओ कानूनक परीक्षा पास कलक। ओकालति आरंभ कलक, किछुए वर्ष में अपन न्यायपरायणता आ विद्वत्ता के बदौलत संपूर्ण अमेरिका में विख्यात भ गेल। ततबे नहि, ओजस्वी वक्ता के रूप में तो विख्यात छले, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सेहो ओ समर्थक छल आ दास प्रथाक प्रबल विरोधी सेहो। कारक ओ अपना समयक सबसँ प्रबल समर्थक छल। यही गुण सभिक बल पर ओ संयुक्त राज्य अमेरिकाक सर्वोच्च पद पर पहुँचबा में समर्थ भेल। हाँ, ओ व्यक्ति छल अब्राहम लिंकन। निर्धन कृषकक पुत्र, जकरा ने कोनो औपचारिक शिक्षा भेटले, न पारिवारिक स्नेह आ न भविष्यक लेल मार्गदर्शन, ओ उच्चताक शिखर पर पहुँचबा में समर्थ भेल मात्र अपन ऊही अध्यवसाय आ परिश्रमक बल पर। अब्राहम लिंकन सिद्ध कऽ देलनि जे जँ इच्छा शक्ति प्रबल हो, संकल्प दृढ़ हो आ अनवरत रूप में परिश्रम कयल जाए, तो साधनक सर्वथा अभाव रहितहु व्यक्ति लक्ष्य सिद्धि में समर्थ भ सकै छै। जीवन में सफल हेबाक लेल साधन संपन्नताक नहि कर्मठताक प्रयोजन होइ छै। वस्तुतः मनस्वीक लेल इच्छा शक्तिये साधन बन जाइ छै, जे ओकरा साध्य दिस अग्रसर करबै छै आ सिद्ध प्रदान करबै छै।
0: सुरेंद्र झा से अभी आपने सुना चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। प्रस्तुत है हमारा दैनिक

0: कार्यक्रम कृषि चर्चा।
1: श्रोता लोकन सुप्रभात, आजुक कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन एकटा कृषि करबाक तरीका अछि जे माटिक उपजापन के लंबा समय तक बनाकर रखबाक हेतु जैविक खाद जाहिमे गोबर और हरियर खाद, बायोफर्टिलाइजर और रासायनिक खाद के उचित अनुपात में संतुलित उपयोग करैत अछि। एकर मुख्य उद्देश्य कम लागत में फसिलक उपजा और गुणवत्ता के बढ़ेनाय अछि। आ प्रश्न उठैत अछि कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन केना, एहि लेल आवश्यक अछि कि पहिने माटिक जांच कराबी, सबसँ पहिने अपन खेतक माटिक परीक्षण कराबी, जाहिसँ हमसब बुझब कि कोन पोषक तत्वक कमी अछि और ओकर कतेक आवश्यकता अछि। दोसर अछि जैविक और हरियर खादक प्रयोग। खेतक तैयारी के समय भरपूर मात्रा में कंपोस्ट या गोबरक खाद के उपयोग करी। तेसर अछि संतुलित रासायनिक प्रयोग। मात्र आवश्यकता का अनुसार रासायनिक खादक उपयोग करी और बराबर माटि जांचक सिफारिश के पालन करी। फसिल चक्र अपनेला पर दलहनी फसिल के फसिल चक्र में शामिल करी, किया तो प्राकृतिक रूप से माटि में नाइट्रोजनक मात्रा बढ़ावित है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधनक प्रमुख स्रोत है जैविक गोबरक खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, हरियर खाद और फसिलक अवशेष। ई माटिक बनावट और जल धारण क्षमता में सुधार करैत अछि। रासायनिक उर्वरक, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश जना उर्वरक ई गाछ के तुरंत आवश्यक पोषक तत्व जना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रदान करैत अछि। जैव उर्वरक राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और PSB जना सूक्ष्म जीव ई वायुमंडलीय नाइट्रोजन के माटि में स्थिर करैत अछि और अघुलनशील फास्फोरस के घुलनशील बनाबित। समेकित पोषक तत्व प्रबंधनक अर्थ जैविक खाद, बायोफर्टिलाइजर और रासायनिक खादक उचित अनुपात में एक साथ उपयोग। एहि पद्धति से फसिल का संतुलित पोषण भेटैत अछि, माटि का उपजापन लंबा समय तक बनल रहैत अछि और उत्पादन टिकाऊ बनैत अछि। ई माटि के स्वास्थ्य के बनाकर रखैत अछि, उर्वरक के लागत के कम करैत अछि, फसिल के गुणवत्ता और उत्पादन के बढ़ाबैत अछि तथा बेसी रासायनिक उपयोग से होय वाला पर्यावरणीय नुकसान का कम करैत अछि। किसान के सबसे पहिने अपन माटिक जांच करबाक चाही और आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वक प्रयोग करबाक चाही। खेतक तैयारी के समय गोबर खाद, कंपोस्ट, हरियर खाद और फसिल अवशेषक उपयोग करी, संगे संग अनुशंसित रासायनिक खाद दी और बेहतर परिणाम के लिए एजेटोबैक्टर या PSV जेहन बायोफर्टिलाइजर का मिलबा के चाही। ऐसे की होया कि यहाँ का खेत का और उपजापन बढ़ेत अछि। पिछला किछ दशक में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावे के लिए अंधाधुंध रासायनिक खाद और पादप सुरक्षा रासायनिक प्रयोग भेल, जेकर परिणाम स्वरूप उत्पादन में तो निश्चित रूप से वृद्धि भेल, परंतु एकर संगे संग एकर अनियोजित प्रयोग का दुष्परिणाम निकलल। पर्यावरण असंतुलन, माटिक उर्वरा शक्ति छीन भेनाय, माटि में उपस्थित लाभकारी सूक्ष्म जीव के नष्ट भेनाय आ मृदा अपरदन। आय स्थिति ई अछि कि रासायनिक खाद का भरपूर प्रयोग के बावजूद वांछित उपजा अछि ओ नहि भेट रहल यऽ, जेकर अनेक कारण अछि, जेना उर्वरक असंतुलित प्रयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वक अभाव, उर्वरक प्रयोग के गलत विधि और समय, असंतुलित जल प्रबंध, पौधा सुरक्षा, रासायनिक आवश्यकता से बेसी प्रयोग और उचित फसिल चक्र ने अपने। ऐ सब समस्या से निपटे के लिए आवश्यक है कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली अपनावी, रासायनिक खाद के अधिकाधिक प्रयोग जैविक खाद के उपयोग का महत्वहीन बना देते, जैसे मृदा में जीवांश पदार्थ के मात्रा कम भेला के संगे संग सूक्ष्म पोषक तत्वक उपलब्धता में कमी आबित। मृदा के असंतुलित दोहन के चलते जिंक, सल्फर, आयरन, बोरान आ मालिब्डेनम जेहन सूक्ष्म तत्व कमी भ जाइए, कारण फसिल में अनेक रोग पैदा भ जाइए। आय स्थिति अछि कि रासायनिक खाद के भरपूर प्रयोग के बावजूद वांछित उपजा नहीं भेट रहल अछि। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्राचीन प्रणाली अछि, जेकर महत्व हरित क्रांति से पहिने के समय में समकालीन जीवन निर्वाह खेती के कारण पहचानल नहीं गेल। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के लक्ष्य पादप पोषक के सबटा प्रमुख स्रोत के समाकलित रूप में कुशल और आवश्यकतानुसार उपयोग अछि, जैसे मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव देने बिना अधिकतम आर्थिक उत्पादन पाओल जा सके। एहि के संगे कृषि चर्चा के समय सम्पन्न होइत अछि। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिय, नमस्कार।
0: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे।

प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। श्रोताओं, समय है हिंदी समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमेरिकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, विषय है ल्यूकोरिया रोग और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हिना आरजू।
1: ल्यूकोरिया हमारे समाज में बहुत ही आम बीमारी है जो कि करीब 60% औरतों में पाया जाता है। किसी भी औरत में अगर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोरिया कहते हैं। यह डिस्चार्ज आमतौर से 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियों में या फिर गर्भावस्था के दौरान या अंडेदानी से अंडे निकलने के दौरान या मासिक से पहले बढ़ जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, वैसा ल्यूकोरिया जिसमें बदबू ना हो या जिसके कल्चर से कीड़े ना निकलें। यह या तो सर्विक्स से होता है या वजाइना से होता है। सर्विक्स से उस स्थिति में होता है जबकि सर्विक्स में इन्फेक्शन हो जाए या सर्विक्स की सतह पर जख्म हो जाए या बच्चा पैदा होने से सर्विक्स फट जाए, उस स्थिति में ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। वजाइनल ल्यूकोरिया, वजाइना की सतह से डिस्चार्ज उस समय बढ़ जाता है जैसे कि गर्भावस्था के दौरान या अंडदानी में ज्यादा खून का जमना या पेल्विस में इन्फेक्शन होने से वजाइनल ल्यूकोरिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक, जो भी वजाइनल डिस्चार्ज पस की तरह हो और उसमें बदबू हो और उसके कल्चर में कीड़ा निकले उसे स्पेसिफिक ल्यूकोरिया कहते हैं। इसके कारण है ट्राइकोमोनियासिस, ये सबसे प्रमुख और सबसे आम कारण है। इसमें डिस्चार्ज हरा पतला और वजाइना की सतह पर दर्द का अनुभव, वजाइना की सतह में जलन और खुजली हो जाती है, मरीज को पेशाब में जलन, पेशाब करने के बाद दुखन, पेड़ों में दर्द, कमर में दर्द का अनुभव होता है। इस डिस्चार्ज के कल्चर से ट्राइकोमोनास कीड़ा मिलता है। इसका ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह या टिनिडाजोल 300 मिलीग्राम की सुबह शाम एक सप्ताह। इसके अलावा सेटनिडाजोल की दो गोलियां 1000 मिलीग्राम जो बना देती हैं वो सिर्फ एक बार दी जाती हैं, या वजाइना यानी कि मासिक के रास्ते रखने की गोलियां जैसे बीटाडीन वजाइनल पेसरीज कहते हैं या मलहम जिसे जेल कहते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कारण है कैंडिडियासिस, इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो दही की तरह होता है और ये आमतौर से गर्भावस्था के दौरान या फिर डायबिटीज के मरीजों में पाया जाता है। इसमें भी वजाइना की सतह पर खुजली और जलन का अनुभव होता है, उसके अलावा पेशाब में भी जलन होती है। इसके ट्रीटमेंट में कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल की 150 मिलीग्राम की टैबलेट सिर्फ एक बार दी जाती हैं। इसके अलावा मासिक के रास्ते रखने की पेसरीज जिन्हें हम माइकोस्टैटिन पेसरीज कहते हैं वो भी दी जाती हैं। इनके अलावा क्लमाइडिया भी एक कारण है, इसमें पेशाब में भी जलन होती है, दुखन होती है और डिस्चार्ज होता है। इसके ट्रीटमेंट में भी टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम की सुबह दोपहर शाम और रात यानी 4 टाइम 14 दिनों के लिए दिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट 100 मिलीग्राम की सुबह और शाम 14 दिनों के लिए या फिर अमोक्सिसिलिन की 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह या एरिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट्स सुबह दोपहर शाम एक सप्ताह तक दी जाती हैं। एक और प्रमुख कारण है गार्डेनेला वजाइनालिस वजिनाइटिस, इसमें जो डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया होता है वो मछली

0: मछली की तरह होता है, मछली की तरह की बदबू वाला होता है और ये भी हरे रंग का होता है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह शाम एक सप्ताह या 2 ग्राम की एक साथ दी जाती हैं। इनके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम 100 मिलीग्राम की गोलियां 14 दिन या टेट्रासाइक्लिन की 500 मिलीग्राम की गोलियां सुबह दोपहर शाम और रात 14 दिन तक दी जाती हैं। इसके अलावा रोगी को किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, विशेषज्ञ थी डॉक्टर हिना आरजू। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। पहले ये देशगान।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। अभी आपने सुना देशगान, अब हम आपको सुनवाते हैं हेमलता एवं साथियों की आवाज में ये चौपाई।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा प्रोडवाल के स्वर में भजन। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को अपने न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। अगर आपने न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज और अभी ही कर लें और सुनते रहें हमारे सभी कार्यक्रम। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। हमारा अगला कार्यक्रम है

रामचरित मानस गान। तो आइए सुनते हैं सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंद्रेशी के स्वर में रामचरित मानस गान।

श्री राम की प्रभुता असीम है, ऐसा समझकर गोस्वामी तुलसीदास अपने को उनका गुणगान करने में सर्वथा असमर्थ पाते हैं। अपनी विनयशीलता के अनुरूप गोस्वामी जी अपने को न तो कवि कहलाने योग्य मानते हैं, न ही सच्चिदानंद भगवान के गुणगान में चतुर और सक्षम पाते हैं। फिर भी मति अनुरूप राम गुण गावं। अपने पूर्ववर्ती बुद्धिमान प्राकृत कवियों का, जिन्होंने अपनी समर्थ भाषा में प्रभु चरित्रों का वर्णन किया है, तथा उनका भी जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, उन सब को नमन करते हुए तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा का आरंभ किया है।

रामचरित मानस गान अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर आप सुन सकेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से शाम 7:30 पर। 7:47 पर आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे पटना केंद्र से। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:52 पर। 8:15 पर आप सुन सकेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। लोक माधुरी रात्रि 10:00 पर हम आप

हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की का संक्षिप्त विवरण। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में फिर हिंदी में, हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमरीका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: 2005 में अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की देवेदारी को मान्यता दी गई थी। 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1937 में जगन्नाथ मिश्रा भारतीय राजनेता और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे का जन्म हुआ था। 1937 में अनीता देसाई अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिकाएं थी हैं का जन्म हुआ था। 1897 में संगीतक ओमकार नाथ ठाकुर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री संगीतक एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का जन्म हुआ था। 1869 में दामोदर हरी चापेकर भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक का जन्म हुआ था।
1: और गप करी तो 1963 में डाक टेलीग्राफ विभाग राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा का शुरुआत केने छल। और आइए के दिन 2010 का अगर गप करी तो विंबलडन के टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटा 5 मिनट धरि चलल छल। ई ऐतिहासिक मैच अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माहुत के बीच खेलायल गेल छल। तीय के नाम सब जानकारी प्राप्त करते रही कि आई के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। आ कार्यक्रम आगू बढ़े अपने सबके मैथिली गीत सुनबी।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत। उम्मीद करते हैं कि अभी सभी श्रोता को जरूर अच्छा लगा होगा। और इसके साथ चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हां, अपने आस पड़ोस की गतिविधि या संस्कृति पर डालते हैं नज़र, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित हैं आशीष जी।
1: धन्यवाद मनोज। आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संघ हम छी आशीष। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सीतामढ़ी जिला के सरकारी विद्यालय सब में चल रहा स्वागत सप्ताह यानी बैक टू स्कूल वीक के अंतर्गत बच्चा सबके उत्साह बढ़े के लिए विभिन्न गतिविधि के आयोजन भ रहा है। सीतामढ़ी जिला में 2026-27 में पैघ पैमाना पर पौधारोपण अभियान चलाएल जाएत। जल जीवन हरियाली

अभियान के अंतर्गत उद्यान आ वन आधारित खेती के बढ़ावा दे के लेल 4,76,000 फलदार और इमारती लकड़ी के पौधा लगाओल जाए। एहि के लेल विभाग भी बीजी रामजी योजना के अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना तैयार कऽ चुकल छथि। अभियान के उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के संगे संगे किसान के आय बढ़ेनाइ सेहो अछि। सीतामढ़ी जिला के सरकारी विद्यालय सब में शैक्षणिक व्यवस्था के सुदृढ़ करबे के लेल आ शिक्षक और छात्र के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करे के लेल जिला प्रशासन काल्हि मंगल दिन बहुत पैघ कदम उठेने छल। डीएम के निर्देश पर जिला के सबटा 17 प्रखंड में एक संगे व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाओल गेल। विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड से 5-5 विद्यालय के चयन कऽ के कुल 85 स्कूल के निरीक्षण कयल गेल। स्थानीय BDO, CO, CDPO, BPRO और BEO चयनित विद्यालय सब में पहुँच के शिक्षक सब के उपस्थिति, छात्र उपस्थिति, पठन पाठन की स्थिति आ विद्यालय संचालन के वास्तविक स्थिति के जायजा लेलथि। सीताम 91वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल सीतामढ़ी में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन आ तनाव प्रबंधन के सुदृढ़ बनबे के लेल उद्देश्य सँ परसू और काल्हि यानी 22 और 23 जून के मेंटल वेलबींग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर 2 दिनक कार्यशाला का आयोजन भेल। कार्यशाला का आयोजन कमांडेंट संजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन आ उप कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर सुमित कुमार चौरसिया के पर्यवेक्षण में कैल गेल। गौरा बोराम में पश्चिमी कोसी तटबंध का जायजा लेल गेल। कार्यपालक अभियंता कमलेश कुमार भंडारी के अनुसार तटबंध सुदृढ़ अछि और आबय वाला वर्ष के लेल सुरक्षित सेहो अछि। 2025 में नियुक्त भेल 230 प्रशिक्षु सिपाही सब के बुनियादी प्रशिक्षण दरभंगा जिला में जुलाई 2025 से प्रारंभ भेल छल। प्रशिक्षु सब के तय मानक के अनुरूप विधिवत प्रशिक्षण सत्र पूर्ण होय पर काल्हि मंगल दिन प्राचार्य से SSP के निर्देशन में पुलिस केंद्र दरभंगा स्थित परेड ग्राउंड में दीक्षांत समारोह सह पारण परेड सम्पन्न कराओल गेल। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार तिवारी उपस्थित रहत। लहरियासराय में शहरी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि सबके लेल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर कार्यशाला आयोजित कयल गेल। मुहर्रम के देखैत 26 जून एहि अवसर पर जिला भरि में 515 से बेसी स्थल पर दंडाधिकारी आ पुलिस पदाधिकारी के नियुक्ति कयल गेल अछि। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पहिल पूर्ण एक्सप्रेस वे बने ले जा रहल अछि। ई दरभंगा सहित 6 जिला के जोड़त, जैसे रोजगार, व्यापार और पर्यटन के बढ़ावा भेटत। झंझारपुर निर्मली लोखा रेलखंड से जुड़ल रेल यात्री सुविधा आ बुनियादी ढांचा के मजबूत करे के लेल रेल विभाग बहुत रास विकास योजना का मंजूरी दलत है। अई नई नबका परियोजना सब में करोड़ों रुपया खर्च है, जैसे झंझारपुर और ओकर आसपास के क्षेत्र में रेल परिचालन का सूरत बदल जाए। ई विकास कार्य से रेल यात्री सबका सफर आसान हेतन और क्षेत्र में कनेक्टिविटी सेहो बेहतर है। मधुबनी में DM आनंद शर्मा के निर्देश पर सबटा नगर निकाय के जनप्रतिनिधि सभक लेल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। बिहार में CCTNS केस के पहिल परियोजना के सफल क्रियान्वयन के सुनिश्चित करबे के लेल NIC बिहार के दिस सँ काल्हि 23 जून के एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कयल गेल। ऑनलाइन केस दर्ज करे के लेल पुलिस सब के लेल ई कार्यशाला के आयोजन कयल गेल छल। बिहार में सिपाही के रिक्त पद पर नियुक्ति के लेल 24 जून के आयोजित होय वाला लिखित परीक्षा के सबटा तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि। आई विभिन्न केंद्र पर सबठाम ई परीक्षा के आयोजन होयत। सुपौल में मुहर्रम के शांतिपूर्ण तरीका से मनबे के लेल DM सावन कुमार के अध्यक्षता में शांति समिति के बैसार आयोजित कयल गेल। सुपौल जिला में बच्चा और किशोर सबका अधिकार के सुरक्षा के लेल पुलिस प्रशासन महत्वपूर्ण कदम उठेलत। सबटा थानाध्यक्ष के बाल संरक्षण के नोडल पदाधिकारी बनाओल गेल छह।

0: बढ़ित साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के घटना पर रोक लगबे के लेल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपन खाताधारक सबके लेल नबका सुरक्षा सुविधा शुरू कलत है। एकर अंतर्गत बैंक खाता के निगरानी साइबर विशेषज्ञ सबके टीम करत। कोनो खाता पर साइबर हमला या संदिग्ध गतिविधि के आशंका होय पर खाताधारक के SMS के माध्यम से तत्काल अलर्ट पठाओल जतन। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बरखा के तीव्रता कम होय के बाद कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट के सिलसिला जारी है। सहरसा में प्रोबेशनरी IAS केतन शुक्ला जीविका कार्यालय के भ्रमण कलथ। सहरसा में प्रमंडलीय आयुक्त के अध्यक्षता में राजस्व आ विकास काजक समीक्षा बैसार भेल। ऑनलाइन सेवा सबके गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न करे पर आर अटकल मामला सबके जल्दी खत्म करे पर जोर देल गेल। सुपौल में बाढ़ पूर्व तैयारी के समीक्षा के लेल अपर समाहर्ता मोहम्मद तारिक आ सहायक आपदा प्रबंधक चंद्रभूषण कुमार किशनपुर आ सरायगढ़ अंचल के निरीक्षण कलथ। छातापुर में 28 आ 29 जून के सदगुरु कबीर साहब के 627 जयंती धूमधाम से मनाओल जायत। एहि में संत महात्मा आ श्रद्धालु सब भाग लेतत। कार्यक्रम में सत्संग भजन कीर्तन आ भंडारा के आयोजन हैत। एहि संग संपन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: अब डालते हैं आज के मौसम पे एक नजर। पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 23 जून से 28 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान के अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों में आम तौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कहीं कहीं छीट-फूट वर्षा हो सकती है। हालांकि 28 से 29 जून के आसपास बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ अनेक स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की अनुमान है। इस अवधि के अधिकांश समय आकाश में हल्की से मध्यम बादल छाए रहने की संभावनाएं हैं। औसतन अधिकतम तापमान 35 से 37 सेंटीमीटर के बीच रहने की संभावना है, जबकि सिवान, गोपालगंज एवं बेगूसराय जैसे कुछ जिलों में तापमान 40 सेल्सियस से तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर मधुबनी एवं सीतामढ़ी जिले में वर्षा की घटनाओं के कारण अपेक्षाकृत कम तापमान महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 से 28 सेल्सियस के बीच रहने की अनुमान है। सुबह की सापेक्षिक आर्द्रता 75 से 80% तथा दोपहर की सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 30% रहने की संभावनाएँ हैं। हवा मुख्यतः पूर्व दिशा से 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। इसी पे डाले आज लोकल अपडेट पे नज़र। तो नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मिर्च, पशु आदि से संबंधित शिकायतों को लेकर के निगम के नियंत्रण कक्ष में फ़ोन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 6202777740 पर शिकायत कर सकते हैं। बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के नंबर हैं। शहर के मोबाइल नंबर हैं 7763818777। ग्रामीण के हैं 9264456412। बेनीपुर के हैं 7633997831 पर शिकायत कर सकते हैं। रेलवे की अगर बात करें तो 8:26 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति, 12:33 पर हैं पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, 7:00 है नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। अगर विमान की बात अगर करें तो 9:30 पर हैं मुंबई के लिए जो रोज़ाना जाती है, 11:30 पर है दिल्ली के लिए ये भी रोज़ाना इस समय उड़ान भरती है, 12:25 पर कोलकाता के लिए, 12:50 पर दिल्ली के लिए, 1:35 पर मुंबई के लिए जिसका समय है रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार, 3:00 हैं हैदराबाद के लिए इसका भी रोज़ाना समय है, 4:35 पर दिल्ली के लिए।

0: एखन हमसब ईसब अहाँके किछु जानकारी सब प्राप्त करैत रही।
1: और इसी के साथ आज है बुधवार और हम लोग प्रत्येक बुधवार को सुनते हैं मिथिला की आवाज़। तो आज आशीष कुमार सिंह से बातचीत हुई है डॉक्टर हिमांशु शेखर से, आइए सुनते हैं मिथिला की आवाज़।
2: नमस्कार, मैं आशीष और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर, गेस्ट।

0: नमस्कार, मैं आशीष और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु शेखर। गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं हिमांशु जी और MBBS MS आपने किया हुआ है, गैस्ट्रो सर्जन के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं। तो गैस कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन अब हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति हर घर में इससे पीड़ित है। तो गैस है क्या और पीड़ित बढ़ते जा रहे हैं?
1: गैस का प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल, मतलब आपको मुझे सब आदमी को है। अब इसमें है कि मेन तो खान पान और रहन सहन के बदलाव के हिसाब से है। पहले लोग ज़्यादा चलते फिरते थे, दिन भर काम करते थे, खाना भी अच्छा खाते थे। अब इतना भागम दौर है कि लोग कुछ भी खा के और बैठ जाता है काम करने, न वॉक करता है न कोई कुछ करता है। तो बैड फूड हैबिट, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इनके कारण जो स्टमक में प्रॉब्लम है उससे गैस बन रहा है। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और भी बीमारी होती है जिसको पैथोलॉजिकल कंडीशन बोल सकते हैं, मतलब कि शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण गैस बन रहा है। और जब उसको जानना है तो उसके लिए इवेल्युएशन करना पड़ता है, जैसे उसमें इंडोस्कोपी का रोल आता है। तो दो तरीके से देख सकते हैं गैस को, या तो लाइफ स्टाइल हैबिट, बैड फूड हैबिट, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड, इन सब के कारण जो हो रहा है, जो धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन के कारण जो हो रहा है। और दूसरा कि पैथोलॉजिकल, जिसमें स्टमक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, कोई हाइटस हर्निया, ये सब चीज़ें हैं। तो जब दोनों तरीके से हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो उसमें गैस का रीजन पता चलता है। फिर जब रीजन पता चलेगा तो ट्रीटमेंट बेटर होगा, आप ठीक होंगे।
0: खान पान कितना मायने रखता है और रूटीन किस तरीके से होनी चाहिए?
1: रूटीन तो अब जैसे सुबह सुबह उठ के अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन है खाली पेट में चाय पी लेना। तो क्या है कि फास्टिंग स्टमक बहुत दिन से है, रात में 8 बजे आप खाए, और हमारे यहाँ लेडीज लोग सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती हो 11 बजे से पहले में। तो जब 14 घंटा तक पेट एम्प्टी स्टमक है तो उसमें गैस वैस बनेगा। उसके बाद भी आप चाय कॉफ़ी अगर खाली पेट में लेते हैं तो ये सबसे चीज़ से भी होता है। एक्सरसाइज नहीं है, कोई योगा नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी नहीं है, सुबह सुबह उठ के बस मोबाइल चलाते हैं या अपना काम करते हैं, तो इसके कारण जो है ये लाइफ स्टाइल वाला गैस में इसका रोल है। तो उसमें क्या है कि अगर जैसे बहुत देर एम्प्टी स्टमक होते हैं तो कम से कम सुबह उठ के कुछ सत्तू पी लेना चाहिए, सुबह सुबह गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी कैसे भी खाली पेट में वो लेना ज़्यादा ज़रूरी है। एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आदमी को रियलाइज़ नहीं होता है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होगा। जवान आदमी तो 20 किलो वजन उठा लेता है, 35 साल का आदमी नहीं उठाएगा, 50 साल का अब भी नहीं उठाएगा। तो अपना डाइजेशन भी वही है, शुरू शुरू में सब कुछ पच जाता है, लोग रेड मीट भी खाते हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, है ना। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे 20 साल का आदमी खा रहा है अगर वैसे ही 40 का खाएगा तो पेट खराब होना, गैस वैस होना, ये सब ज़रूरी है। तो वेजिटेरियन डाइट, फाइबर रिच डाइट, उसको ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो रेड मीट, हैवी मीट है उसको कम करना चाहिए, फास्ट फूड को कम करना चाहिए, ये सब कुछ बदलाव है, एक्सरसाइज करना चाहिए।
0: और गैस किन किन बीमारियों को और भी न्योता देता है?
1: अगर कोई भी गैस जो आप गोली बोलते हैं या लोग कुछ सिरप पी लेता है, इससे अगर हल्का फुल्का है, सिम्टम हो गया, ठीक हो गया, पेशेंट ठीक है, तो फिर तो दिक्कत नहीं। लेकिन आप 10 डॉक्टर साहब के पास मिल लिए, सब भी अपने हिसाब से कुछ सिरप और कुछ टैबलेट और कुछ कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है और आपको पता है कि पेट में दिक्कत है, तो आप बंद कर दीजिएगा। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, तेल मसाला भी बंद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर गैस नहीं ठीक हो रहा है, मतलब कि पेट के अंदर कुछ पैथोलॉजी है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है जो पेट में पाया जाता है, तो उसको इंडोस्कोपी का जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि क्या कारण है जिसमें ये गैस बन रहा है। तो अगर आपके तरफ से एहतियात बरतने के बावजूद गैस नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, फर्दर इवेल्युएशन करना चाहिए, उसमें एक ऐसा पैथोलॉजी निकलने का चांस है जो जब पता चलेगा तो उसका इलाज होने से ठीक होता है।
0: जी धन्यवाद। एखन हम सब किछु मिथिला की आवाज़ में सुनैत रही डॉक्टर हिमांशु शेखर से गप सब। गैस एकटा एहन बीमारी के रूप में एखन आइ के समय में आबि गेल अछि, जेकर हमर अहाँ के रूटीन, हमर अहाँ के खान पान के चलते ई बीमारी बढ़ रहल अछि। और गैस बीमारी आन

0: बीमारीके सेहो जनरैत अछि। बहुत कारण अछि गैसके, लिवरके कारणे सेहो गैस भऽ सकैत अछि, अहाँके आन पेटके आन कोनो बीमारी रहैत अछि सेहोसँ गैस भऽ सकैत अछि, आओर खान पान आओर अहाँके रूटीनके कारण सबसे बेसी एखन ई समस्या उत्पन्न भऽ रहल अछि। ताहिपर हम अहाँ ध्यान दी आओर भुखले पेट जतेक बेसीसँ बेसी नहि रहि सकी से नीक रहत।
1: बिल्कुल सही कहा अपने आशीष कि हमें अपना शरीर के लिए खुद जिम्मेवार हैं और उसका ख्याल हमें खुद रखना होगा, जिसके कारण है कि आप अपने समय समय पर अपने शरीर पर ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें, ताकि आप तंदुरुस्त और स्वस्थ रह सकते हैं। और आशीष, अभी के समय में ये तो गैस की बात हुई कि जो हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन बाहरी गैस भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जिस पर भी हम लोगों को ध्यान होता है। जी हाँ, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? आशीष, आज हम लोग एक यही बात पे बात करना चाहते हैं, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि अभी के समय में जो हम लोग खुल के सांस लेते हैं, जिसके सहारे हम लोग जीते हैं, वही चीज़ इतना दूषित होता जा रहा है जिसपे संभालना बहुत ही मुश्किल है, गंभीर समस्या बन चुका है ये प्रदूषण। वायु प्रदूषण का अर्थ है कि हवा में धूल, धुआं, जहरीले गैस और अन्य हानिकारक तत्वों का मिल जाना, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के कारण हम लोग सांस लेने में भी परेशानी, अस्थमा, फेफड़े की बीमारी और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती है।
0: ठीक है, आपका मनोज। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सब साल 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से होयवला बीमारी के कारण मर जाए छथि। ताहि दुआरे हमर अहाँ सबके कर्तव्य बनैत अछि और जिम्मेदारी होइत अछि कि हम सब एकरा कम करे के दिशा में आगू बढ़ी।
1: सही है कि सबसे पहले हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे हवा शुद्ध होती है। व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें तो वायु प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
0: और अगर गाछ के गप कर रहा तो गाछ एक प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर है। पीपल, नीम, बरगद जेहन पेड़ का गप करी तो एक दिन में 20 किलो तक धूल सोख ले छती सब, और सब व्यक्ति साल में कम से कम 2 गाछ अगर लगा भी तो हमर अहाँ के धरती है से हरल भरल भ सकैत अछि। घर में तुलसी, एलोवेरा जेहन इंडोर प्लांट जे तकरो लगा कर राखि सकै छी।
1: दूसरा उपाय है कि हमें वाहन को कम उपयोग करना चाहिए, जहाँ संभव हो पैदल चलना या साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वाहन से निकलने वाले धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा ही कारण है। यदि लोग बस, ट्रेन और मेट्रो जैसी सुविधाओं का अधिक उपयोग करें तो प्रदूषण कम आएगी।
0: सही गप कहलो। और खास करके जे छोट छोट दूरी है जकरा हम सब अहाँके पैदल जा सकै छी और वह तो साइकिल के सवारी सेहो करी, साइकिल सवार अगर अहाँ से अहाँ लग लग छोट छोट दूरी अगर तय करब तो अहाँके स्वास्थ्य के दृष्टि सेहो ई ठीक है और हवा तकरो ले नीक हैत। और आब इलेक्ट्रिक कार सबके, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा सबके जमाना आबि रहल अछि, तकर उपयोग के बढ़ावा देबाक चाही पेट्रोल डीजल सबके जगह पर। और ऑफिस या कॉलेज अगर जाइ छी तो ओहि समय असगर असगर अगर 4 जाइ छी, 4 गाड़ी लऽ कऽ जाइके बदला अगर 4 एकटा गाड़ी से चल जाए तो बचत सेहो हैत और प्रदूषण के सेहो कम करै मे हमसब अपन योगदान दऽ सकै छी, कियाकि एके ठाम अगर 4 एक जगह से जा रहल छी तो एक सने जाएब, एक सने आबि जाएब, तो ओहिसँ आसानी सेहो रहत।
1: सही है। उद्योग और कारखानों से निकलने वाले भी धुएं कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी बहुत ही खराब चीज़ होते हैं। यह नियंत्रण करना आवश्यक है कि सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे कारखानों के प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाए।
0: निश्चित तौर पर फैक्ट्री सब में फिल्टर और स्क्रबर लगाने अनिवार्य कर दिल जाए और निर्माण स्थल सब पर पानि के छिड़काव हुए जैसे कि धूल नहीं उड़ पावे, और ईंट भट्टा में जिग-जैग तकनीक अपनाओल जा सकैत अछि। एहि सबसे की हैत, हमसब जे प्रदूषण छै वायु प्रदूषण तकरा बहुत हद तक कम कऽ सकै छी।
1: और विद्यालय, महाविद्यालय और सामाजिक संस्थाओं के समय समय पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि

0: लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी बन सके और हमें सभी को मिलकर के पेड़ लगाएं, प्रदूषण वाली गतिविधियों को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें तो हम आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अधिक पेड़ लगाना, वाहनों को कम उपयोग करना, स्वच्छ ऊर्जा अपनाना, कचरा ना जलाना तथा लोगों में जागरूकता बनाना आवश्यक है। तो
1: और सही बात है, और खास कर के जेना कि चर्चा करते रहे कि स्कूल सब में बच्चा सबके बीच में जागरूकता फैलाएल जाए, जैसे कि अहाँ के ओ घर में ओहो एहि दिशा में कदम उठबत और धीरे धीरे हुनकर ई आदत में शामिल भ जाएन। बिजली बचबै के हुनका बुझाएल जाए, घर से निकले समय लाइट पंखा एसी बंद कर लेत, एलईडी बल्ब के इस्तेमाल कैल जाए, सौर ऊर्जा एखन बढ़ रहा है, सौर ऊर्जा के खपत बढ़ाओल जाए, छत पर सोलर पैनल लगा सकै छी, अहाँ ई प्रदूषण रहित ऊर्जा अछि और अहाँ के बिजली के बचत सेहो होयत और बिजली बिल सेहो अहाँ के कम आयत, तो अहाँ के बचत करै के दिशा में सेहो फायदामंद होयत। और एखन गर्मी जे हिसाब से पड़ि रहल अछि, एसी के खपत लगातार बढ़ रहल अछि, सब एक एक घर में अहाँ के सब रूम में रूम एसी लागल अछि, तो एसी 24 डिग्री पर राखी। बहुत आदमी एहन होइ छथि कि एसी के अरे बहुत बेसी गर्मी लागि रहल अछि, 18 डिग्री 19 डिग्री पर कऽ लै छी, तऽ से नहि, कम तापमान पर एसी बेसी बिजली सेहो खाइत अछि और संगे अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण के सेहो बढ़बैत अछि, तऽ ई चीज के ध्यान राखी। और जागरूकता सबसे जरूरी चीज अछि, गाछ लगबै के दिशा में हुए या स्कूल कॉलेज में छात्र सबके बीच में जागरूकता फैलेनाइ हुए, हम अहाँ जतेक बेसी से बेसी जागरूक होयब ई प्रदूषण के कम कऽ सकै छी।
0: सही बात है कि हमें बच्चों को समझाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाकर के बताना है, जागरूकता फैलाना है, लेकिन हम सभी को चाहिए कि एक एक वृक्ष कम से कम लगाएं, जिससे इतना बड़ा तापमान इतना गर्मी बढ़ रही है जिससे हमें राहत मिल सकता है, दूषित प्रदूषण है उसको शुद्धता मिल सकता है, तो इन सब चीज़ों पर हम सबों को ध्यान देना पड़ेगा।
1: और कार्यक्रम में सेहो ध्यान दे रहल छी हम सब कि आप अपन श्रोता सबके बीच ई गीत आनि रहल छी।

0: मेरा बेरीके सब चीजके समेटैत हमसब कार्यक्रम आगू बढ़ि रहल छी तऽ समसामयिक घटनाके चर्चा कऽ ली। आब कुसियारके पत्तासँ अहाँके कार्बनके उत्पादन हैत, किसान सबके एहिसँ आय बढ़त। आओर एकटा प्रस्ताव अहाँके अहाँके पञ्चायती राज विभाग तैयार कयलक हँ, प्रस्ताव कैबिनेटके मुहर लगैके बाद ई लागू भऽ जायत कि गाम सबमे सफाई आओर पानिके उपयोगपर आब टैक्स लागत। तऽ आओर सङ्गे एकटा आओर तैयारी कयल जा रहल अछि कि आब स्टेट हाईवे, यानी कि पहिने तऽ नेशनल हाईवे छल, तऽ आब स्टेटके भीतर जे स्टेट हाईवे अछि ताहिपर आब टोलके सेहो वसूली कयल जायत। आओर गप करी तऽ जे शिक्षक सबसँ संबंधित एकटा समाचारके, तऽ शिक्षक सबके ऐच्छिक तबादलाके लेल आब 30 विकल्प हुनका सबके देल जेतनि, ओहिमे सँ ओ चुनि कऽ अपन जतय हुनका तबादला लेबाक छनि ओतय ओ लऽ सकै छथि। आओर सबटा सरकारी पॉलिटेक्निक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनत। आओर सङ्गे PM विश्वकर्मा योजनासँ 25 लाख युवाके कुशल बनबैके से लक्ष्य राखल गेल अछि। आओर हीट डोमके भीषण गर्मीसँ पूरा यूरोप झुलैत रहल अछि, कतौ ने कतौ एखन हमसब जेना चर्चा करैत रही वायु प्रदूषण आओर गाछ नहि लगबैके कारण, तऽ ईसब अहाँके आब असर देखेनाइ शुरू भऽ गेल अछि। आओर एकटा खाद्य पदार्थ सबके पैकेटके माप सेहो आब तय हैत। तऽ ई एखन हमसब समसामयिक घटनाके बारेमे चर्चा करैत रही, जानकारी प्राप्त करैत रही।
1: और

0: एक चर्चा हमारे पास और है, जो है कड़ी मेहनत और बनाम स्मार्ट वर्क। मित्रों, आज स्मार्ट वर्क विषय पर चर्चा करने का मतलब है कि मेरा मानना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कड़ी मेहनत हमें अनुशासन, धैर्य और संघर्ष करना सिखाते हैं। जो व्यक्ति लगातार परिश्रम करते हैं, वह धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को दूर करके सफलता की ओर बढ़ते हैं। देखें तो जैसे किसान खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, तभी अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी भी नियमित अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, आधुनिक युग में स्मार्ट वर्क का महत्व भी बढ़ गया है। स्मार्ट वर्क का अर्थ है कि किसी कार्य को सही योजना, सही तकनीक और कम समय में अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करना। आज तकनीक नए साधनों के कारण कई कार्य को सही योजना, सही तकनीक, नए साधनों के कारण कई कार्य आसानी से और तेजी से किए जा रहे हैं। आज के समय में उदाहरण रूपी देखें तो कुछ मिनटों में संभव बना दिया है। कई लोग यह मानते हैं कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता का रास्ता है, जबकि कुछ लोग स्मार्ट वर्क को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। वास्तव में दोनों का अपना अपना महत्व है। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल स्मार्ट वर्क है लेकिन मेहनत करने की आदत नहीं है, तो वह लंबे समय तक नहीं सफल हो सकते।
1: निश्चित रूप पर खास करके एखुनका जो समय है, अगर खाली अहाँ मेहनत करे ला जा रहा अगर अहाँ स्मार्ट तरीका नहीं अपनाबे छी, तो अहाँ मेहनत करते रह जाए और अहाँ से जे आदमी मेहनत के संगे संगे अपन अहाँके स्मार्ट तरीका अपने तत वो आगू बढ़ जतत। एकटा छोट सनक हमरा गप मन पड़ रहा है। एकटा कंपनी अपन के सबटा स्टाफ सबके अहाँके डाटा मैनेजमेंट के कंपनी छल, तो डाटा जमा केनाइ ओकर काज छले। तो सब स्टाफ के लगबे छले सब दिन अपन अहाँके हर घरे घर जाओ मोबाइल नंबर लऽ कऽ अबैले, तो अपन क्षेत्र में सबठाम अहाँके सब दिन के काज लगाएल जाए और आदमी सबके जते हुनकर स्टाफ रहथिन जाथिन घरे घर घूमथिन आदमी के नाम मोबाइल नंबर लऽ कऽ अबैत रहथिन। ओहिमे से एकटा हुनकर एम्प्लॉय छलन, से अहाँके की छै एक दिन ओकर मालिक अपन हाथ के निकलल छल, देखल कि ओकरा एक दिन एकठाम अहाँके मॉल में घूमैत, दोसर दिन देखल कि एकटा पार्क में घूमैत, और साँझ में जखन अहाँके डाटा दे के गप अबे तो सब अगर अहाँके की छै 10 घर के दे तो वो अहाँके 25 घर के डाटा दे। और जे पर अगर कॉल लगाएल जाए तो सबटा डाटा सही, तो यानी कि डाटा से सही छै तखन अहाँके और घूमैत हुनका सब दिन मालिक देखथिन। आखिर एना काज केना कर रहा, अंत में अहाँके वो स्टाफ के हर एम्प्लॉय छलन तिका बजलखिन और कहलखिन कि हम अहाँके की छै किछु न बिगड़े ला जा रहा छी न किछु करे ला जा रहा छी, हम खाली बुझै ला चाहे छी कि हम तो अहाँके सब बेर हम अहाँके घूमैत फिरैत देखै छी, हम देख रहल छी अहाँके तखन, मुदा अहाँ ई डाटा आनी केना छी? तऽ कहलखिन अगर हमरा किछु नहि कही तखन तऽ हम बता सकै छी। कहलकै कि हम अपन जे क्षेत्र अछि ओ क्षेत्रमे कुरियर वला सबसँ गप कयने छी, ओ जतेक ठाम कुरियर पठबैत अछि ओ सबठाम ओकर मोबाइल नम्बर दैए, ओ डाटा हमरा ओ दऽ दैए आओर वएह डाटा हम आनिकऽ दऽ दै छी, हमर काज भऽ जाइए 10 मिनटमे। तऽ ई भेल स्मार्ट तरीका, काज करबाक अछि मुदा केना करबाक अछि ई अगर अहाँके जानकारी हुए तऽ ओ काजके बहुत आसान तरीकासँ, बहुत नीक तरीकासँ, सुचारू ढङ्गसँ बहुत जल्दी समाप्त कऽ लेब। आओर अगर अहाँ किछु कहै छै कि मेहनत कऽ रहल छी तऽ अहाँ करिते रहि जाएब, ताहि दुआरे ई जानकारी हेबाक चाही। अहिना बहुत रास चीज अछि, ताहिपर अगर हमसब स्मार्ट तरीकासँ अगर किछु मेहनत के जोड़ि दिए तऽ हमसब सफल हेबे करब। ओना कार्यक्रममे आब समय हमरा सबके समाप्तिके दिशामे अछि, तऽ चलैत अपने सबके फेर ई गीत सुनबै छी।
0: आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाएब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार प्रभात, इसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।
1: आतंकवाद

0: आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश

0: अपने देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान की तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
3: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा

0: जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
1: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है, इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हों, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ब्रिक्स नेशंस कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग

0: की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहिरे ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 trillion dollars तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखा तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है, जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकत दारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरुद हैं। इस दौरान जनाब गौर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इकतसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इकतसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब आबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नेट, JRF या PhD की योग्यता प्राप्त हो। इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 30 जून तक कर ली जाएगी। गौरतलब है कि इन नए डिग्री महाविद्यालयों में 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू और मैथिली विषयों की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए IIT पटना के साथ टाई अप करने के निर्देश दिए हैं। पटना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। साथ ही श्री चौधरी ने राज्य के विद्यालयों और छात्रावासों में नामांकित इस वर्ग के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दिए जा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी जाँच की सुविधा पंचायत स्तर पर पहुँचाई जाएगी। श्री ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान के तहत पूर्णिया जिले के कठौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से संवाद के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाना और कृषि लागत को कम करना है।
1: खेत स्वस्थ रहेगा तब ना हम स्वस्थ। कृषि विभाग ने ये समझा कि वैज्ञानिकों के साथ खेत में जाकर देखने, तो वो 2025 में हम लोगों ने किया। अब ये खेत बच

0: जाना है तो हर एक गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, पदाधिकारियों को देख रहे हैं। फिर एक महीने का अभियान है, इसमें जो रिपोर्ट आएगा, रिसर्च होगा, उसके बाद फिर दूसरा अभियान चले।
1: कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने अपने कृषि नवाचारों और सफल प्रयोगों की भी जानकारी साझा की। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की उपस्थिति में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी। इस टीम में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी और प्राधिकरण का एक नामित पदाधिकारी शामिल होगा। यह टीम अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और फायर रिस्पॉन्स प्लान सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की सुविधा शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष एसी लाउंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी पार्टनर से संवाद भी किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने बताया कि बैठने की आरामदायक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाओं से युक्त ये लॉन्ज गिग वर्कर्स को गर्मी, बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम में राहत प्रदान करेंगे।
2: हर एक घर की जरूरतों को इनके माध्यम से पूरा किया जाता है। उनकी असुविधा को देखते हुए कि जितनी गर्मी पड़ रही है कि उनको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले, एक स्थान दे, थोड़ा वो रेस्ट कर ले, तो पटना स्मार्ट सिटी ने ये सोचा। प्रयोग के तौर पर दो स्थानों पर हम लोगों ने शुरू किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मैं देखने के लिए आया। जैसे जैसे फीडबैक आएंगे, सुझाव आएंगे, आप लोगों से भी सुझाव मिलेंगे, तो इसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
1: गौरतलब है कि पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इधर रेलवे ने कल भी 9 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। बिहार संग्रहालय ने पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक टिकटधारी आगंतुकों का रिकॉर्ड दर्ज किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की शासी निकाय की बैठक में संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति नई दिल्ली, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना समेत देश भर में कुल 9 संग्रहालयों के विकास और स्थापना में अहम भूमिका निभा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक कलाओं से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बिहार राज्य हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के दो रुख देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर बिहार में मानसून के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहीं दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में लू की चेतावनी जारी की है।
3: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
2: इधर विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट की संभावना है। वहीं इस अवधि में 41.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान बक्सर, गया जी और शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते कोसी और महानंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इसके चलते सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड में महानंदा का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है। इधर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही सहरसा के महिषी और सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं दरभंगा में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से खेधा पंचायत के कुछ गांवों का संपर्क पंचायत मुख्यालय से कट गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
4: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25 से 50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
2: श्री चौहान ने कहा कि कार्य योजना के तौर पर वैकल्पिक फसलों, कम अवधि वाले किस्मों, फसल विविधीकरण और तालाबों, जलाशयों, चेक डैम, फॉर्म बाउंड और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पटना न्याय मंडल की सभी अदालतें 29 जून से सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक चलेंगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव के अनुसार प्रातःकालीन अदालत की बैठकें 27 जून तक ही होंगी। 29 जून से सभी अदालतों में दिवाकालीन बैठकें शुरू हो जाएंगी। गृह विभाग कारा ने पटना स्थित बेऊर जेल में भ्रष्टाचार और अराजकता के मामले में जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत 8 को निलंबित कर दिया है। इनमें 1 कारा उपाधीक्षक, 4 सहायक अधीक्षक और 2 हवलदार शामिल हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा से लगभग 23 किलो गांजा के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। यह ऑटो रिक्शा नेपाल से आ रहा था।

चंपारण जिले के कुमारबाग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी समेत तीन बच्चों को नहर में फेंक दिया। हादसे में तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि पत्नी को बचा लिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। प्रभात खबर ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, SDPO और तत्कालीन थानेदार सहित अन्य पुलिस वालों पर हत्या की प्राथमिकी। दैनिक भास्कर लिखता है, CUET में 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, नेशनल हाईवे पर अब गाड़ी मरम्मत की मिलेगी सुविधा। अखबार लिखता है, NHAI ने दिया क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, पटना के 106 कोचिंग संस्थानों को बिहार अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस। आज अखबार के शब्द हैं, अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी।

0: 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: ये आकाशवाणी दरभंगा।

0: हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा। सामीन अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब और माह मुहर्रमुल हराम की आज 8 तारीख है। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी तारीख में ख़ास अहमियत रखता है। यूँ तो इस महीने के बहुत सारे अहम वाक़यात हैं, लेकिन सबसे अजीम सानिहा, अलमनाक वाक़या, दर्दनाक वाक़या 10 मुहर्रम यानी योम आशूरा को शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का पेश आया, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत समेत 72 अफराद को शहीद कर दिया गया। और इस वाक़े को गुज़रे हुए एक अरसा गुज़र चुका है, कई सदियां बीत गई है, लेकिन माह मुहर्रम के आते ही ये ज़ख़्म ताज़ा हो जाता है, हर आंखें नमनाक हो जाती है और हर दिल गमगीन हो जाता है। तो इस माह मुबारक की मुनासिबत से कुछ ख़ास पेशकश है, आइए सबसे पहले सुनते हैं सलाम जनाब सैयद शमीम अहमद से।
1: बहुत ही अकीदतों के साथ सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। अर्ज किया है कि या जल

सरवर की बंदगी को सलाम, जमाना करता है सरवर।

एहतमाम किया। उस आफताबे इमाम

किया जलने बहत्तर की जिंदगी को सलाम, किया जलने बहत्तर की जिंदगी को सलाम, कटाए बाजू मगर

इतना दरख्शा है कहाँ, आमना के चांद से आंखें मिलाकर देखिए आसमां का चांद भी। इतना दरख्शा है कहाँ, आमना के चांद से आंखें मिलाकर देखिए आमना के चांद से। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं,

सब कुछ लुटा कर देखिए मजहबे इस्लाम पर, सब कुछ लुटा कर देखिए आके करबल में कभी, काबा बना कर देखिए मिसले फर्जंदे अली, गर्दन कटा कर देखिए। नाथे पाक का मतलब समाज फरमाए मुस्तफा।

मुस्तफ़ा आ गए इनकलाब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए इनकलाब आ गया, रब आलम का जब इंतखाब आ गया, रब आलम का जब इंतखाब आ गया, जोल के सब दिए बुझ गए यक बयक, जोल के

अब आ गया। और शेर समाज फरमाइएगा कि पूछिए ना हलीमा की खुशबख्तियाँ, पूछिए ना हलीमा की खुशबख्तियाँ, गोद में उनके जब महताब आ गया, गोद में उनके जब महताब आ गया, मुस्तफ़ा आ गए इनकलाब आ गया, रब आलम का जब इंतखाब आ गया। और अगला शेर समाज फरमाए, अम्बियायूं तो आए सवा लाख पर, अम्बियायूं तो आए सवा लाख पर।

जवाब आ गया। और आखिरी से समाज फरमाए, सारी कलियां उम्मीदों की खिलने लगी, सारी कलियां उम्मीदों की खिलने लगी, अर्श आजम से जब एक गुलाब आ गया, अर्श आजम से जब एक गुलाब आ गया, मुतफा गए इनकलाब आ गया, रब आलम का जब इंतखाब आ गया। और मक्तसमात फरमाए हजरत, डर से अब तो जुल्मत भी छट जाएगी, डर से अब तो जुल्मत भी छट जाएगी, ए नदीम, ए नदीम।

सदर आलम पे भी एक चश्मे करम फरमा दे, सदर आलम पे भी एक चश्मे

कब्र में जब उठा ए फरिश्ते मुझे,

आशा भोसले एवं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म नया दौर का गीत, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत ओमकार प्रसाद नैयर ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म यादों की बारात का ये गीत आशा भोसले एवं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

मुकेश चंद्र माथुर एवं लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पारस मणि में। गीत लिखा था फारूख कैसर ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म ब्लैकमेल से। किशोर कुमार का स्वर है, बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुनिए फिल्म प्रेम रोग का ये गीत सुरेश वाडेकर की आवाज में, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म प्रेम रोग के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। सदाबहार गीतों का आनंद आप पुनः ले सकेंगे दिन के 1:15 पर। वक्त है लोकगीतों का, तो आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। पहला गीत इसमें हमने लिया है संगीता सिन्हा के स्वर में, नचारी।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। अभी आपने सुना चंद्रिका कुमारी को, अब सुनिए राम प्रसाद पासवान को।

लोक गीतों के कार्यक्रम में ब्रजेश कुमार सुमन से अभी आपने गंगा गीत सुना। आइए अब राखी कुमारी से सुनते हैं ये सुंदर सा लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम, जिसमें अभी आपने सुना पूनम कुमारी को। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी दरभंगा का अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज। आइए इनसे सुनते हैं बांसुरी पर राग अहीर भैरव में अलाप जोध झाला।
1: नमस्कार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ तबला बजाने के लिए परम पूज्य मेरे गुरु समान

इजाजत चाहता हूं। प्रस्तुत है राग अहीर भैरव, आलाप जोड़ झाला और दो बंदिशें ताल धमार और तीन ताल।

शास्त्रीय संगीत में भी आप सुने थे बांसुरी वादन पर राग अहिर भैरव अलाप जोध और झाला, रोनू मजुमदार और किशन जी महाराज से। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर

0: घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ के रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूं।

0: हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
4: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
4: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सब प्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
4: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
5: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
4: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
5: जी
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
6: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
4: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
6: जी जी,
4: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
6: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
4: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
6: जी
4: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं

0: राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी,
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि

0: इसे सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते।
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनके मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोता भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म मिस्टर सेलिब्रिटी से। गायक कलाकार हैं अभिलिप्सा पांडा, गीत लिखा है योगेश पंडित ने, संगीत दिया है विनोद ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

श्रेया घोष और जुबिन नौटियाल को भी आप सुन रहे थे फिल्म माँ में। गीतकार मनोज मंतशेर और संगीत दिया था रॉकी शिव ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 से। गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा, गीत और संगीत जानी के हैं।

तू झूठी मैं मक्कार का यह गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में। गीत रचना गीतकार हैं शायद कादरी, संगीत दिया है मिथुन ने, आवाजें विशाल मिश्रा और पलक मुच्छल की है। आइए सुनते हैं बनवास फिल्म का यह गीत।

कुशल किशोर और विशाल मिश्रा के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंखों की गुस्ताखिया से। गायक कलाकार जुबीन नौटियाल, संगीत निर्देशन विशाल मिश्रा ने किया था। इसी के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी बहनों को विजेता का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का नारी संसार कार्यक्रम में स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आपको वार्ता भी सुनवाएंगे, हर दिन कुछ खास में जानेंगे कुछ टिप्स और आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए आपको सुनवाएंगे कुछ प्यार भरे नगमे। तो आइए अब कार्यक्रम में देर ना करते हुए हम आपसे बात करते हैं पुनर्विवाह को लेकर सकारात्मक होता समाज के विषय में। तो बहनों, वो ज़माना और था जब महिलाओं को पति के देहांत के बाद जीवन जीने की भी आज़ादी नहीं थी। उन दिनों जब किसी महिला के पति गुजर जाते तो उसकी ज़िंदगी से जैसे सारे रंग गायब हो जाते, उसे सन्यासी की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता, उसे अपने हर अरमान हर इच्छा को त्याग करना पड़ता, सादा वस्त्र पहनना पड़ता, सादा भोजन करना पड़ता, बिस्तर के बजाय ज़मीन पर सोना पड़ता। इस तरह पति के देहांत के बाद महिलाओं का जीवन होता, जिसे महिलाओं को परिवार के डर से, समाज के डर से निभाना पड़ता था। एक तो महिलाओं को पति के न रहने का दुख सताता और दूसरा परिवार और समाज के लोग इस तरह के प्रथा को बनाकर महिलाओं का जीवन जीना और भी दुर्लभ कर देते। जैसे लगता विधवा होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है महिलाओं के लिए, या किसी पति के द्वारा पत्नी का छोड़े जाना एक बहुत बड़ा कलंक है। पर धीरे धीरे वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ साथ लोगों की सोच बदली, लोग शिक्षित हुए, धीरे धीरे पति के देहांत के बाद महिलाओं के साथ बदसलूकी कम होने लगी, क्योंकि लोगों की सोच पहले से बदल चुकी थी। सबसे पहले तो महिलाओं को पति के देहांत के बाद सती करने की जो प्रथा थी उसे राजा राममोहन राय ने तोड़ा, तो महिलाओं को सती प्रथा से मुक्ति मिली। फिर भारत में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने और इसे समाज में महत्व देने का सबसे बड़ा श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। उनके द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर कोशिश की गई उसी का ये फल है कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये साबित किया कि धर्म भी विधवा विवाह की अनुमति देता है। इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, विष्णु शास्त्री पंडित जैसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, इसे महिलाओं के हक के लिए सही समझा। आज इसी

इसका परिणाम है कि पुनर्विवाह को लेकर लोगों की सोच बदली। धीरे धीरे परिवार के लोग, समाज के लोग ये समझने लगे कि महिलाओं को भी अपनी इच्छा से जीवन जीने का हक है। पति के गुजर जाने से जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी में बहुत कुछ करने को है, इसे यूं ही बर्बाद करना ठीक नहीं। या जो महिला अपनी पति के साथ किसी भी कारणवश नहीं रहती, या जिन्हें पति से प्रताड़ित होकर अलग रहना पड़ता है, उन लोगों को भी जिंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। अब परिवार, रिश्तेदार पुनर्विवाह में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। समाज के लोग भी इस बात को महत्व देने लगे कि जीवन साथी की कमी के कारण जीवन को बर्बाद करने के बजाय सम्मानजनक ढंग से उसे दोबारा शुरू करनी चाहिए। आज पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। विभिन्न राज्य की सरकारें भी महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर रही है। उदाहरण के लिए झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत आर्थिक मदद का भी प्रावधान है। बहनों, पर अफसोस, इतना सब कुछ महिलाओं के हित में होने के बावजूद भी आज भी कहीं कहीं पुनर्विवाह को लेकर लोगों में नकारात्मक सोच बनी हुई है, जिसे सकारात्मक सोच में बदलने के लिए समाज के शिक्षित वर्ग को आगे आना होगा और महिलाओं की खुशी के लिए, उनके जीवन को खुशी से भरने के लिए, उनके जीवन के अकेलेपन और सूनेपन से बचाने के लिए उन्हें कारगर कदम उठाना होगा। किसी भी वजह से जो महिला अपने पति के साथ नहीं रहती, वो अपना अस्तित्व खुद बना सकती हैं, तो ऐसे में उनका समर्थन करना होगा, उनका साथ निभाना होगा, ताकि वो भी समाज में अपने पैरों पर खड़े होकर के शान से जी सके, बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सहारे के, दूसरों के लिए भी सहारा बन सके। तो बहनों, अपनी इस चर्चा को अब यहीं पे विराम देती हूँ और आपको ले चलती हूँ मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाती हूँ एक प्यारा सा फिल्मी गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा जी। मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहरी इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं दो

0: हमारा मुखिया बनेगी।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वार्ता। डिजिटल शिक्षा और कैरियर वार्ताकार हैं श्वेता।
3: आइए आज बात करते हैं बच्चों के लिए बेहद जरूरी डिजिटल शिक्षा के बारे में। डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इसे बच्चों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने और डिजिटल दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा सीखने की एक तकनीक या यूं कहें कि एक विधि है जिसमें प्रौद्योगिकी और डिजिटल डिवाइस शामिल है। इंटरनेट की सुविधा ने छात्रों, पेशेवरों और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए सीखने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। आज के दौर में ऑनलाइन कोर्सेज विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ये कोर्सेज केवल अकादमिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि करियर डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज कई प्रकार के होते हैं जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, उच्च शिक्षा। टेक्निकल और व्यावसायिक कोर्सों में आईटी, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्र में ऑनलाइन कोर्स किए जा सकते हैं, जो कि आपके करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होती है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौशल विकास, बैंकिंग, यूपीएससी, नीट, नेट, बीपीएससी जैसे विशिष्ट परीक्षाओं की भी तैयारी ऑनलाइन क्लासेस से की जा सकती है, जो छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई प्रदान करते हैं और सहायक बनते हैं। ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की तुलना में अधिक सुविधाजनक और प्रभावी होती जा रही है। इसके बहुत सारे लाभ हैं जो इसे आधुनिक समय की आवश्यकता बता रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए किसी विशेष जगह जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अपने घर, ऑफिस या लैपटॉप, मोबाइल की माध्यम से इस पढ़ाई को कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज पारंपरिक शिक्षा की तुलना में खर्चीले भी कम होते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स भी उपलब्ध हैं जो निःशुल्क हैं और छात्रों और पेशेवरों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के नई चीज़ें सीखने का मौका देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में विद्यार्थी अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और उन्हें समय की बाध्यता नहीं होती। ऑनलाइन माध्यम से कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी कोर्स के लिए ऑफर करते हैं। वहां जाकर विद्यार्थी कोर्स कर सकते हैं और वहां से प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जो करियर में बहुत लाभदायक होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन शिक्षा का ये है कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र जो पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं भी हैं, जैसे कि फ्री लैपटॉप योजना। भारत सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य वैसे छात्रों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके बच्चों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने और डिजिटल दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसलिए हर किसी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के अनेक साधन अब उपलब्ध हैं, तो इसका फायदा उठाइए और आज के दौर में कंधे से कंधा मिलाकर चलिए।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मैं प्रेमा देवी, 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर, प्रखंड दोसरा, जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर, अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लाइब्रेरी खोले हैं, जिच्छा मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों डिजिटल शिक्षा से बच्चे कैसे करियर बना सकते हैं, अभी हमने जानकारी प्राप्त की हमारे रेडियो सहेली श्वेता से। पर जो छोटे बच्चे होते हैं

डिजिटल शिक्षा को नहीं समझ पाते, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उन्हें तो पढ़ाई लिखाई से जोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ पाते। वो इन बातों से बिल्कुल अनजान अपनी ही दुनिया में, मतलब खेल की दुनिया में ही लिप्त रहते हैं और पढ़ाई में ज़रा भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। पर बहनों, वो तो छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम सिर्फ प्यार से ही समझा सकते हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाई से किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, उनके अंदर कैसे रुचि को जगाएं, आइए इस संदर्भ में कुछ बात करें। बहनों, जो छोटे बच्चे होते हैं यदि वो चाहेंगे तो वो सीधी तरह से पढ़ने बैठ जाएं और कम से कम एक घंटा पढ़ लें तो ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों की चंचलता उन्हें एक घंटे बैठ कर पढ़ने ही नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले बच्चे की रुचि को जानना ज़रूरी है। यदि उसकी रुचि ड्राइंग करने में है तो आप उसके साथ बैठकर चित्रकारी करें, तरह तरह के पेड़ पौधे बनाएं, तरह तरह के पिक्चर बनाएं, जैसे उनका मन खुश रहे चित्रकारी करने में। और जब वो थोड़ी देर चित्रकारी करेंगे तो वो खुद ब खुद पढ़ाई करने को तैयार हो जाएंगे। जब आप उन्हें पढ़ने को कहेंगी तो वो खुद ही बैठ जाएंगे। छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के ज़रिए भी पढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट वर्क के ज़रिए स्कूल में भी पढ़ाई करवाई जाती है। बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क करने में अपनी रुचि दिखानी होती है, उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है और उनका रुझान पढ़ाई की तरफ हो जाता है। बच्चे जब पढ़ते समय बोरियत दिखाएं तो उस वक्त किताबें बंद कर दें और उन्हें सीख भरी कहानियाँ सुनाएं या उनके साथ माइंड गेम खेलें, पहेलियाँ बुझाने को कहें। इससे बच्चों का दिमागी कसरत भी होगा, उन्हें मन भी लगेगा और फिर वो एक बार फिर से पढ़ने को तैयार हो जाएंगे। बहनों, कभी भी बच्चों के ऊपर पढ़ाई को न थोपें, इसे वो बोझ समझ लेंगे और पढ़ाई से अपनी दूरी बना लेंगे। इसलिए यदि वो खेलना चाहें, ड्राइंग करना चाहें, प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो उन्हें रोके नहीं, बल्कि खुद भी उनके साथ बैठकर उसकी इस तरह के काम में उसकी मदद करें। बच्चों को उसके स्कूल के होमवर्क को करने में भी उसकी मदद आप कर सकती हैं। बीच बीच में उन्हें किसी किसी बात पर हंसाती भी रहें, जिससे पढ़ाई में उनका मन लगा रहे और वो खुश होकर पढ़ाई करें, पढ़ाई को कभी बोझ ना समझें। इसके अलावा उन्हें पेड़ पौधों की देखभाल करना भी सिखाएं, ये भी बच्चों को पढ़ाई के अंतर्गत रखने का एक बेहतरीन उपाय है। जी हाँ, बच्चों को पेड़ पौधे रोपना, वो बड़ा कैसे होगा, उसमें फूल फल कब लगेंगे, ये सारी जानकारी आप उसे दे सकती हैं, जिससे उनका झुकाव पर्यावरण की रक्षा की तरफ होगा, वो इसके द्वारा पढ़ाई से भी जुड़े रहेंगे। तो बहनों, इस तरह छोटे छोटे बातों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए कुछ कारगर उपाय आप कर सकती हैं और अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य दे सकती हैं। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर लोअर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह, ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था, जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी, प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों, हर दिन कुछ खास में आइए जाने पुदीने के फायदे। रोजाना पुदीने की पत्ती चबाने से दांतों और मसूड़ों से खून निकलने की समस्या और पायरिया रोग से राहत मिलती है। ये एंटीसेप्टिक जैसा काम करता है। एक गिलास पानी में पुदीने की 4 से 5 पत्तियां डालकर उबले हुए पानी से कुल्ला करने पर मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। पुदीने की पत्तियों को पीसकर उसमें नींबू के रस की 2 से 3 बूंद डाल चेहरे पर लगाने से मुहासों की समस्या से दूर होती है और त्वचा में ताजगी आती है। पुदीने का ताज़ा रस क्षय रोग, अस्थमा और विभिन्न प्रकार के श्वास रोगों में बहुत लाभकारी है। पानी में नींबू का रस, पुदीना और काला नमक मिलाकर पीने से मलेरिया के बुखार में भी राहत मिलती है। हकलाहट दूर करने के लिए पुदीने की पत्तियों में काली मिर्च पीसकर और सुबह शाम 1 चम्मच सेवन करने से ये समस्या दूर हो जाती है। पुदीने की चाय में 2 चुटकी नमक मिलाकर पीने से खांसी में भी लाभ मिलता है। तो ये था बहनों हमारा आज का स्वास्थ्य टिप्स। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई टिप्स है जो आप हमारे ज़रिए अन्य श्रोता बहनों तक पहुंचाना चाहती हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए नारी संसार कार्यक्रम से अपनी रेडियो सहेली विजेता को अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया।

0: और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना। 2:30 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का। दिन के 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत।

युवा को संबोधित कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे। हमारे केंद्र से संध्या 5 बजे युवाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। संध्या काल में फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे। 5:40 पर विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे। शाम 6:10 पर गांव घर कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से। शाम 6:30 पर गांव घर में आज श्रोता सुनेंगे घर आंगन। साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी हम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे। फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे 7:52 पर। मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगर हार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। लोक माधुरी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे लोक गीतों को रात्रि काल 10 बजे। साथ ही 10:30 पर आप आनंद ले सकेंगे हमारे

से फिल्म में गीतों का गीतों के रंग में सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

मुकेश की आवाज में अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनपढ़ से। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है।

सत्येंद्र अथर्व के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म नौ बहार से, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया था रोशन ने। श्रोताओं, सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना रजा मेहदी अली खान की है, संगीत दिया है मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का यह गीत।

शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म पगला कहीं का में। गाय कलाकार मोहम्मद रफी, गीतकार हसरत जयपुरी। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म नीला कलश से। गीत के बोल लिखे हैं रजा मेहदी अली खान ने और इस गीत को अपने धुनों से संवारा है मदन मोहन ने।

आन मिलो सजना। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, फिल्म आरजू से।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, फिल्म आस का पंछी से।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हंसते जख्म से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, एस बलबीर और उनके साथी। गीत के बोल लिखे हैं कैफी आज़मी ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय चयन पर्षद आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज भी 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद किया गया है। वहीं अन्य 2 की तलाश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की सुविधा शुरू कर दी गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष एसी लाउंज का निरीक्षण किया। लाउंज में शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने इन स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रोहतास जिले के डिहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया।

0: और नई जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसेप टू की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉड की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल अंतर्गत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशन के बीच राजेंद्र पुल पर आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल अधिकारियों के अनुसार इसे ठीक कर लिया गया है और रेलखंड पर परिचालन बहाल हो गया है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड आज रियासत में मुख्तलिफ मराकज पर बिहार पुलिस में सिपाही इम्तहान का इनेकाद कर रहा है। इम्तहान का इनेकाद दो नशस्तों में किया जा रहा है। इसे मद्देनज़र रखते हुए तहफ्फुज़ के मुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं। सभी मराकज़ पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस दस्ता को तैनात किया गया है। इधर रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मशरक़ी वस्त रेल के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत मुख्तलिफ स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना का एक अहम इजलास मुनक़िद किया जाएगा। काबीना सेक्रेटरीट से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये इजलास शाम 5 बजे सेक्रेटरीट में वाक़े काबीना हॉल में होगा। इजलास में कई अहम तजावीज़ पर तबादले ख्याल की उम्मीद है। मुंगेर ज़िला के मुफसिल थाना हलका के तहत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चियों की मौत डूबने से हो गई। इनमें से 3 बच्ची की लाश निकाली गई है, वहीं दीगर 2 की तलाश जारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जाए वकूफ पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफसिल थाना हलका के तहत टीका रामपुर गंगा घाट पर डूबने से 1 नौजवान की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए जदीद तरीन AC लॉन्च की सहूलत शुरू हो गई है। वजीर शहरी तरक्यात व रहाइश नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और इनकम टैक्स गोलंबर के करीब बनाए गए खसूसी AC लॉन्च का जायज़ा लिया। लॉन्च में साफ पीने के पानी, मोबाइल चार्जिंग समेत कई सहूलतें दी गई हैं। पटना मुल्क का तीसरा शहर है जहाँ गिग वर्कर्स के लिए खसूसी AC लॉन्च की सहूलत को फ़रोग दिया गया है। रियासत के शुमाली हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से बारिश का दौर जारी है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत रियासत के शुमाल मगरब और शुमाल वस्त हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई मकामात पर बिजली गिरने का भी खदशा है। इधर रियासत के जनूब मगरब हिस्सों में सख्त गर्मी पड़ रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा समेत रियासत के जनूबी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर लू की सूरत हाल बनी रहेगी। महकमा ने इन मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के इजाफा का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास ज़िला के डेहरी वाक़े बिहार स्पेशल मुसल्लह पुलिस बीसैप कैंपस में आज 1355 खवातीन सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में शिरकत की और नई जिम्मेदारी का हलफ लिया। बीसैप टू की कमांडेंट और सीनियर आईपीएस अफसर लिपि सिंह ने परेड का मुआयना किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला फोर्स से मुतालिक इन खवातीन सिपाहियों ने कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल करके जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का जिला सतह का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मंशियात की स्मगलिंग और उसके गैर कानूनी

इस कारोबार पर काबू पाने के साथ साथ नशे के खिलाफ बेदारी के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रेलवे डिवीज़न के तहत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशनों के दरमियान राजेंद्र पुल पर आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक इसे ठीक कर लिया गया है और रेल रूट पर आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। सुपौल जिला के सदर थाना इलाके के तहत सहरसा सुपौल मेन रोड पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

लेखा परीक्षक एवं सहायक के कुल 1829 पद निकाले गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB ने कुल पद 130 निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/7/2026 है। आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 ने कुल 607 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होनी चाहिए। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

बीएसएनएल ने कुल 100 पद निकाले हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 4/6/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए आवेदक का न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। इस पद की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर देख सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी

0: जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
0: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं, उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है, ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन्स हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24

0: 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जल स्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक के उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।

0: पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः आप आने लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म शोर से। गायक कलाकार हैं

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः आप आने लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म शोर से। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर, मन्ना डे और श्याम चितर। गीत लिखा है संतोष आनंद और राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हैं।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मिस्टर इंडिया फिल्म का यह गीत। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अंदाज से। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक कलाकार किशोर कुमार।

कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म साथी में। गीत रचना समीर की थी, संगीत दिया था नदीम सरवन ने। श्रोता अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में, फिल्म मात्र से। गीतकार हैं एस के खलीश, संगीत दिया है फुजौर ने।

राहत फतेह अली खान के सुर में भी आप सुन रहे थे फिल्म मत का यह गीत। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं मंजूर खान।

सारी दुनिया को भूल जाता हूँ, सर झुका कर।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यश

0: तस्वी मुखिया
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है। तो वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया
0: अल्ट्राटेक। यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत मंजूर खां के स्वर में।

मंजूर खां के सुर में भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
1: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, तो हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता
0: क्या
1: है।
0: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
1: तो ऐसी जब
0: बेतुकी बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं,
1: और मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
0: एक पन दो का है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
1: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
0: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में आपने कहा अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों

0: जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी की, जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
0: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
0: हाँ,
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती
0: है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
0: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
0: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और ये ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
1: थोड़ा सोचे समझे। संयम से काम है।
0: वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है।
1: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी उसे आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग। और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में,
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के

0: हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा, यानी जो जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे, जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली, जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है, आप सोचिए कि हर जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में, अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथी लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं,

0: मन मित्र है और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अनर्थ करने की कोशिश करे तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध मतलब उसने खुद को जीत लिया।
0: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाई तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है। बहुत सुंदर लिखा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज के तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है उसी प्रकार जीवन में उपलब्ध भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल। हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं कई कठिनाइयां कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखे और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करे, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज नहीं तो
0: साल नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए ये डिश, आज ही बनना चाहिए तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे। तो बचपन से ही उन्हें इस
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाए। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का।
0: एक गाना सुनाना चाहिए। सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर 1 छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और 1/2 कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकती है। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।

0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
2: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
3: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
2: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
3: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
2: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
3: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची, फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके, हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
2: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखाकर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
3: और अब क्या करना है?
2: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
3: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता। तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे। तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे। इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे। और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
1: जी हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
1: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप। किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है।
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक

0: इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
0: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।
1: जी जी।
0: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारी का जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारी का वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है, तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है, तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी, तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली, और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है। बढ़िया।
0: तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
1: जी जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
0: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं

0: चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो, और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में
1: जी,
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो, और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम

0: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
1: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया देखना इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे। तो उस तरह से मेरा भी संपर्क जो है आदिवासी कला से वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद उन सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज़ जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
0: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही है इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
1: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है, मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया और मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
0: गजब।
1: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार, आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं,

0: किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है? आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
1: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
0: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे, हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
1: हाँ, तो मुझे मतलब रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं, किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो वो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नए कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं, तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते। जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन,
0: मौसम फिल्म का गाना है
1: जी। हाँ,
0: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई, और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था, एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया, और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वनमेन शो था बम्बई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चेस्टर हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है आज की हमारी दूसरी यानी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपका दोस्त भवेश। स्वीकार करें मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं आप भी अच्छे होंगे और इस वक्त रेडियो सेट के माध्यम से हमसे जुड़ चुके होंगे। आज हम चर्चा करेंगे महिला नेतृत्व और कूटनीति में युवतियों

की भागीदारी पर। श्रोताओं, आज 24 जून है और हर साल 24 जून को महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने के लिए कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। महिला नेतृत्व और कूटनीति में युवतियों की भागीदारी एक अधिक शांतिपूर्ण, समावेशी और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी बात अगर हम करें तो यह केवल एक लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति में विविध दृष्टिकोण और अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने की कुंजी भी है। श्रोताओं, इस पर चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये देवी गीत।

हम बात कर रहे थे कूटनीति और नेतृत्व में युवतियों की भूमिका पर। अगर हम बात करें तो युवा महिला राजनयिक कूटनीति में बातचीत, शांति निर्माण और संघर्ष निवारण के लिए नए और व्यवहारिक दृष्टिकोण लाती हैं। समानता और मानवाधिकारों की वकालत पर अगर हम बात करें तो वे अक्सर उन मुद्दों पर मुखर होती हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता। समावेशी निर्णय प्रक्रिया पर अगर हम बात करें तो महिला नेतृत्व अक्सर अधिक समावेशी, सहयोगी और सहानुभूतिपूर्ण होता है, जो कर्मचारियों की संतुष्टि और दीर्घकालिक संस्थागत सफलता को बढ़ाता है।

हम बात कर रहे थे महिला नेतृत्व और कूटनीति में युवतियों की भागीदारी पर। भूमिका के बाद अब हम प्रमुख चुनौतियों पर बात करते हैं। युवतियों को कूटनीति और राजनीति करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। रूढ़िवादी सामाजिक मानदंड अभी भी महिलाओं के नेतृत्व को सीमित करते हैं। बात करें तो निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन अब इसमें कमी आ रही है, या कहें

तो अब ये बात गलत साबित हो रही है। संतुलन की समस्या की अगर हम बातें करते हैं तो व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों, विशेषकर कूटनीति जिसमें लगातार यात्राएं शामिल होती हैं, के बीच में संतुलन बनाना काफ़ी कठिन होता है।

कुंज बिहारी मिश्र के गाए इस मैथिली सुगम संगीत के साथ ही श्रोताओं अब कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो रहा है, तो कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने रेडियो मित्र भवेश को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
1: एनपीएस पेंशन?
0: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
1: बुढ़ापा सुरक्षित?
0: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे।

साजन चले ससुराल फिल्म का गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म संगीत का आनंद एक बार पुनः आप लेंगे शाम 7:52 से। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ा

के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

विद्यापति गीतों का आनंद आप लेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे मैथिली संवाद संध्या 6:25 पर।

शाम 7:52 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होगा आज रात 8:15 पर।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात 10 बजे समय होगा लोकगीतों के विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी का।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति रामकुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक के स्वर में ये विद्यापति गीत।

0: विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना प्रेम कुमार मल्लिक, राम कुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक और शारदा सिन्हा को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सौ प्रस्तुत संवाद, संवादक संग हम छी कल्पना झा। राज्य सरकार उच्च शिक्षाक विस्तारक लेल 5 जिला में 5 नव निजी विश्वविद्यालय स्थापना आ संचालन के स्वीकृति देलक अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में आई भेल कैबिनेटक बैसक पारित कैल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपन सोशल मीडिया पोस्ट मे ई जनतब साझा करैत जनौलनि जे मधुबनी में सांझा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीता योग विश्वविद्यालय आ सिवान में एक विश्वविद्यालयक स्थापना आ संचालन के स्वीकृति देल गेल अछि। केंद्रीय चयन पर्षद आई प्रदेश भर में विभिन्न केंद्र सब पर बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षाक आयोजन कैल गेल। परीक्षाक आयोजन 2 पाली में भेल, एहि के लौका सुरक्षाक व्यापक प्रबंध कैल गेल छल। सब केंद्र पर मजिस्ट्रेटक निगरानी में पुलिस बलक तैनाती छल। एम्हर रेलवे अभ्यर्थी सभक सुविधाक लेल कतेको स्पेशल ट्रेन चलौने अछि। राज्य सरकार प्रत्येक मासक अंतिम रवि कऽ पंचायत विकास दिवस मनेबाक निर्णय कयलक अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिलाक एक चयनित पंचायत सँ 28 जून कऽ एहि कार्यक्रमक शुभारंभ करताह। एकर उद्देश्य ग्रामीण विकास योजना सभक समीक्षा आ जन भागीदारीक माध्यमे पंचायत सभक सतत आ समग्र विकास के बढ़ावा देब अछि। कार्यक्रमक सफल आयोजनक लेल सब जिला के आवश्यक निर्देश जारी कैल गेल अछि। राजस्व एवं भूमि सुधार

0: मंत्री दिलीप जायसवाल कहलनि जे राज्य मे भू सुधारक काज जारी रहत। ओ कहलनि जे सरकारी भूमि के हर हाल मे अतिक्रमण मुक्त कराओल जायत। श्री जायसवाल आइ पटना मे पत्रकार सभ सँ गपशप करैत जनौलनि जे पीरपैंती पावर प्लांट CNLU निफ्ट आ सुपौल व्यवहार न्यायालय सहित कतेको ठाम निर्माण कार्यक लेल जमीन उपलब्ध कराओल गेल अछि। ओ कहलनि जे भूमि प्रबंधन के आओर बेसी पारदर्शी बनबैत एकर लाभ जन जन धरि पहुंचेबाक काज कयल जा रहल अछि। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि जे राज्य मे कानूनक शासन अछि। श्री तिवारी कहलनि जे भोजपुर मुठभेड़ मामला मे न्यायिक जांचक आदेश दऽ देल गेल अछि आ प्रारंभिक जांच मे लापरवाही सोझा अयबा पर पुलिसकर्मीक विरूद्ध सेहो कार्रवाई कयल गेल अछि। श्री तिवारी कहलनि जे विपक्ष के एहि मुद्दा पर राजनीति छोड़ि कऽ जांच रिपोर्टक प्रतीक्षा करबाक चाही। एम्हर विकासशील इंसान पार्टीक प्रमुख मुकेश सहनी कहलनि जे हालहि मे भेल मुठभेड़क सभ मामिलाक जांच होयबाक चाही। मुंगेर जिलाक मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी मे स्नान करबाक दरमियान 5 युवती डूबि गेलीह। एहि मे सँ 3 युवतीक लाश बरामद कऽ लेल गेल अछि। ओतहि शेष 2 के खोज कयल जा रहल अछि। एम्हर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबवा सँ 1 युवक के मृत्यु भऽ गेल। प्रदेशक उत्तरी भाग मे मानसूनक सक्रियता सँ बरखाक क्रम जारी अछि। मौसम विभाग आइ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया सहित राज्यक उत्तर पश्चिम आ उत्तर मध्य भाग मे अन्हर बिहाड़ि आ वर्षाक अलर्ट जारी कयलक अछि। एहि दरमियान कतेको ठाम वज्रपातक संभावना अछि। एम्हर राज्यक दक्षिण पश्चिम भाग मे भीषण गर्मी पड़ि रहल अछि। विभाग एहि सभ स्थान पर अगिला 48 घंटाक दरमियान अधिकतम तापमान मे 1-3 डिग्री सेल्सियस धरिक वृद्धिक पूर्वानुमान जनौलक अछि। अररिया जिलाधिकारी विनोद दुहन अध्यक्षता मे आइ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकार्ड के जिला स्तरीय समीक्षा बैसक कयलनि। पूर्व मध्य रेलवेक दानापुर रेलमंडल अंतर्गत हाथीदह आ बेगूसराय स्टेशनक मध्य राजेंद्र पुल पर आइ भोर मे ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूटि गेला सँ रेल परिचालन प्रभावित भेल। पश्चात रेलवे अधिकारी लोकनिक अनुसार परिचालन बहाल कऽ देल गेल। सुपौल जिलाक सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन लग मोटरसाइकिलक टक्कर सँ एक किसान गंभीर रूपें घायल भऽ गेलाह। इलाजक दरमियान हुनक मृत्यु भऽ गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: घर आंगन में सब श्रोता लोकन के संगे बहिन सबके मोने दिस स्नेहपूर्वक नमस्कार संगे स्वागत है। लाल बहिन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मोनी बहिन, संगे सब श्रोता बहिन के हमरो दिस नमस्कार। मोनी बहिन, आज से बुध दिन है, अब बुध दिन अपना सब अपन आधी आबादी बहिन लोकन के कार्यक्रम घर आंगन लक अब आ घर आंगन में जहने अब हम सब तो बहुत रास हमरा लोकन के काज बहुत रास गप सब एक सप्ताह के गप सब बाकी रहे बहिन सब सब
0: एकदम
1: बड़ महत्वपूर्ण गप सब रहे
0: सब गप तो महत्वपूर्ण रहते एहन गप रहते जिसके अपन सबके बहिन लाभान्वित भ सके।
1: हां ई नहीं हम सब फदका करे छी से
0: हाँ, नेरो गप अपना सब कखनो नहीं करे छी। आ अपन बहिन सब घरक काज

0: देखब जे कि अपन घरक जे छथि सबसे पहले तो सोंगर होइत छथिन बहिन सब बुझते छिए आ सदिखन देखबनि जे अहाँ लाल बहिन या हम बेसी बहिन सबके देखब जे अपन घरक विकास केना हैत सोचैत सोचैत दुखित पड़ि जाइ छथि।
1: हाँ माने हुनका चिंता लागल रहै छनि ई जे हमर आ घर आगू कोना बढ़त कोना दूटा पैसा हमरा घर में आमदनी हैत जाहिसँ कि हम सहयोग करी ई भावना रहै छनि। घर में एते थकियो जाइ छथि काज कऽ कऽ तैयो ई रहै छनि जे हम बैसल नहि रही कखनो हाथ पर हाथ धऽ कऽ नहि बेसी
0: लाल बहिन दुखित पड़नाइ तऽ एकर निदान नहि अछि तैं दुआरे एकरा लेल तऽ अपना सब बहिन सबके पहिले स्वस्थ रहऽ
1: पड़तै
0: सबसे आवश्यक अछि अपन बहिन सबके लेल कि ओ स्वस्थ रहती तखने घर मे परिवार मे धियापुता आगे बढ़ता नीक सँ पढ़ाई लिखाई करता आ माहौल जे छै वातावरण छै जे घर के एकदम बढ़िया बनल रहे
1: स्वस्थ जखने रहती बहिन कहबे कल घर के जे स्त्री जो छथिन महिला जो छथिन ओ सोंगर होइ छथिन ओ जे अगर कोनो घर के जे महिला अगर बीमार भए छथिन तो ओ घर बुझू अहाँ के से बर्बाद भए जाइए।

0: तखने घर में परिवार में धियापुता आगे बढ़ता नीक से पढ़ाई लिखाई करता आ माहौल जे छे वातावरण छे जे घर के एकदम बढ़िया बनल रहत
1: चाहिए स्वस्थ जखने रहती बहिन कहबे कल जे घर के जे स्त्री जे होइ छथिन महिला जे होइ छथिन ओ सोंगर होइ छथिन आ ओ जे अगर कोनो घर के जे महिला अगर बीमार भए छथिन तो ओ घर बुझू अहाँ के से बर्बाद भ जाइए
0: एकदम
1: किनको कोनो टाइम पर किछु नहि भेटै छै
0: एकदम धियापुता सब सब के पढ़ाई लिखाई बाधित भ जाय छै जे पुरुष छथिन हुनकर काज
1: बाधित जा सकै छथि विद्यालय नहि जा सकै छथि किया तऽ घर के जे महिला छथिन समय पर कोनो चीज बीमार
0: छथिन के लेल अपने आप के सबसे पहले सुरक्षित राखू स्वस्थ राखू तखन देखब जे घरक विकास कोन गति से होत घर केना
1: चाहकैत रहैया से अहाँ देखब
0: एकदम एकदम
1: तब तो जायब तऽ बुझायब जे ओ घर कते सुव्यवस्थित ढंग से ओना तऽ देखियो घर चलिए लै छै कोना न कोना तऽ लोक चलाए लै छै लेकिन एकटा जे होइ छै व्यवस्थित ढंग से चलनाइ एकटा होइ छै हाँ कहुना काज चलैया तऽ से वाला बात तऽ बहिन सब मे एकटा त्रुटि छन जे ओ सबटा काज सबके समय पर कऽ देती मुदा अपने ओ बार बजा लेती
0: एहि
1: दुआरे ओ बीमार के बीमारी के से घर भ जाइ छथि हुनका समय पर
0: जखने खाली पेट रहै छी अपना सब लाल बहिन आ बीच बीच मे की हैत जे की
1: चाह पीबैत रहती
0: भूख लागत कनी चाह पी लै छी कनी चाह कप मे नहि पियै छथिन कतेक बहिन ओ जे बड़का गिलास होइ छै पानि पिए वला मे ओहि मे चाह पियै छथिन ओ चाह कतेक खराबी करैया अपना सबके खाली पेट मे से तऽ जिनका पर बीतैत छै
1: जहन बुझै छथिन गैस लऽ कऽ जहन जायब तहन कहती बहिन हमरा बड गैस बनैया बड मोन खराब अइ भाई डॉक्टरे अहाँके की कर जेना हम अपने नहि देखब अपन स्वास्थ्य के तऽ कते अहाँ दवाई खायब ताहि लए सबके पहिने अपन स्वास्थ्य पर ध्यान राखू सबके स्वास्थ्य पर ध्यान राखू मुदा अपनो के अहाँ ई नहि करू जे नहि हमरा नहि जरूरत अइ से नहि किया तऽ ओ तऽ सबके स्वस्थ रहनाइ आवश्यक छै आ इहो सोचनाइ आवश्यक छै जे दूटा घर मे पैसा कोना आयत कोना आमदनी होयत जँ हमरा ई जे हम मानि लिअ पढ़ल लिखल छी तऽ ओहने काज करब जँ हम व्यवसायसँ जुड़ल चाहै छी सिलाइ कटाइ हमरा अबैया
0: जुड़ि सकै छी
1: ओहिसँ जुड़ि सकै छी कुटीर उद्योग कऽ सकै छी किछु काज एतऽ देखियौ सरकारो बहुत रास योजना
0: अपन बहिन सब आगू बढ़ सकती ओकर लाभ लऽ सकती
1: प्रशिक्षण देल जाइए जे प्रशिक्षित नहि छी प्रशिक्षण लिअ आ तहन ओ काज करू कि एहि तरहे जे हमसब काज करै छी तऽ निश्चित रूपसँ हमरा घरके आमदनी बढ़ैए आ जहने आमदनी बढ़ैए तऽ हमरा सबके प्रसन्नता
0: एकदम तऽ बीचमे अपना सब कार्यक्रम घर आँगनमे किछु सनेश अछि ओ लऽ लै
1: छी

0: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
1: बात घर की।
2: नमस्कार रवि किशन जी, हम दिनेश बोल रहे हैं।
3: दिनेश जी, सवाल पूछिए अपना।
2: इंजीनियर बाबू, नींव रखते समय कौन सी बातों का खास ध्यान रखना है ताकि घर मजबूत और सुरक्षित बने?
4: दिनेश जी, घर की नींव की गहराई और चौड़ाई मिट्टी के प्रकार और बनने वाली इमारत के डिजाइन पर निर्भर करती है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि काम शुरू करने से पहले आप मिट्टी की जांच किसी अनुभवी इंजीनियर से जरूर करवाएं ताकि नींव मजबूत और घर सुरक्षित बने।
1: बात घर की।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
5: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
7: सब श्रोता लोकन के बहन सबके स्वागत करे छिन घर आंगन में सनेस के बाद। आ गप सब करे छन वे जे अपन बहन सब कोन तरह अपन परिवार में अपन सहयोग द सके छथिन, केना के विकास हुए परिवार के, घर के सब सदस्य के, आई में की सब हुनकर योगदान भ सके छ। लाल बहन, एकटा बात बुझै छिए, अपन सब बहन सब अपना सब बड़ बेसी बदनाम छी जे की किछ किछ करे छथिन। जखने जनानी छथिन तखने कहत ओह अहाँ सबके तो आदत अछि किछ किछ करे के, तो ई आदत के अपना सब एकदम सुधार ली। ऐसे की होइ छै, घर के वातावरण एकदम शांत रहै छै। आ कहै छियै ने, जतऽ शांति रहै छै, जतऽ प्रसन्नता रहै छै, सब
8: घर में बड़ा
7: खिलाहट रहै छै, तऽ ओतऽ भगवती आबै छथिन। तऽ ताहि दुआरे अपना सबके, हम कहै छियै अपन बहिन

0: सबके कखनो घर के वातावरण एहन नहीं बनाओ
1: माहौल नहीं बना शांति
0: जिनका जतबे जे स्थिति में खुश रहती
1: ककरो नकल नहीं करी
0: खराब
1: अशांति क्या पसरे है वही दुआरे हाँ दिखावा नहीं संतोषम परम सुखम जब संतोष से एकदम प्रसन्न कमो में कमो आमदनी में कते बहन के देखो कतेक निक से रहे कते प्रसन्न रहे कते के देखो कतबो रहते कनते रहती आदत एहन हो आदत नहीं राखी
0: तो लाल बहन जो बहन सब कानित रहे कतबो हुनका भ जाय छैन अर्थ से तब देखब जे कोहरक वातावरण उहने रहे छै धिया पुता के पढ़ाई लिखाई बाधित भ जाय छै
1: कते के देखब न तहत के मुंह पर 12 बजे रहे छन कखनो हुनका प्रसन्नता नै रहे छन त ओ नै हेबाक चाही कमो में अहाँ प्रसन्न रह सकै छी ने ओ त अपन माने रह के
0: अर्थ के छै समय त अहाँ चाहियो सके साड़ी पहिर सकै छी नुआ आ चाहियो हजार के त ओ त अपन अपन छै हां काज की छै वस्त्र के शरीर तन के झापनाई ना तो वो काज आब जाए इतक ऐश बस प्रसन्न रहो
1: चाहिए आप किछ मनोरंजन से हम बहन लोग के हेबाक चाहिए किया त जन मनोरंजन होय छन तहने ओ तनाव मुक्त होय छत आर प्रसन्नता तो पर आबे जाय छे तो सुनवा दे छन एकटा सुंदर सन लोकगीत
0: बेस

0: मोनी बहन अपना सखन विवाह गीत कन्यादान गीत सुनै छलहुँ अरविन्द कुमार झाके स्वरमे, आओर देखियौ जहन कन्यादानके गीत सुनै छी तऽ मोनमे अपने एहन मायूसी भऽ जाइए जे कतेक हरखक सङ्ग लोक बेटीके विवाह करैए, मुदा जहन दुरागमनके पल अबै छै कन्यादानके बेर अबै छै तऽ लोकके आँखिसँ नोर खसि पड़ै छै, जहन बेटीके जयबाक बेर होइ छै तऽ बहिन लोकनिके इएह कहै छियनि जे बहिन जाहि घरमे बेटी अइ तऽ बेटी तऽ घरक से सुन्दरता होइ छथि, आ जहन बेटी चलि जाइ छथि तऽ ओ घर उदास भऽ जाइए।
1: मुदा कतेक प्रसन्नता होइत अछि हमरा सबके लाल बहिन जखन बियाहमे जाइ छी, तऽ अखन तऽ देखिये रहल छी कतेक धमगज्जर लगन
0: उपनयन मुड़न बियाह सबके अखन धमगज्जर लगन अइ। एहिमे जाइ छी तऽ हमरा सबके इहो ध्यान रखबाक चाही जे जाइ छी तऽ कनि केना कऽ जाइ, एहिपर ई नहि किया तऽ गर्मीके समय छै
1: रौदमे,
0: रौदमे नहि विवाहके समय तऽ मानि लिअ साँझमे छै, लेकिन खेनाइ पिनाइ पर से भोजन नहि दोसरके रहै छै लेकिन जान तऽ अपन
1: एकदम नियन्त्रण राखू, ई नहि तेल मसल्ला बहुत रहबे करै छै,
0: एतने खा लिअ
1: मधुर मिठाई बेसी रहबे करै छै, ई सब तऽ कनि जिनका छनि चहटगर खाइके मोन तऽ हुनका मोन भऽ जाइ छै ललचा जाइ छै कनि खा लै छी, मुदा ओ स्वास्थ्यके लेल कतेक हानि
0: होइ छै। आब एहन नहि जे मोन खराब भऽ जाय, खाउ जतबा अहाँ पचा सकै छी।
1: लाल बहिन कार्यक्रममे समय के अपना सब संगे चलैत घर आँगनमे जे प्रायोजित कार्यक्रम अछि पारा मेडिकल है
0: बेल भऽ गेलै तऽ सुनि हमरा लोकनि ये कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: पूरे बिहार के लोग, जी हाँ पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैथोलॉजी है, बीएससी ओटी है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जीएनएम है, एएनएम है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233 ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है।

0: तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
0: जानकारियों का ही अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
0: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है।
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी, अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी।
0: जी।
1: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये

0: हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहाँ से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जो आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हम हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी।
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है, 1-2-3 साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्रीराज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से,
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी जी,
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल। मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है।

0: सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए, ऐड हो गया मतलब जो जिस लायक का है उसके लायक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लायक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल अररिया पूर्णिया भागलपुर इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा, मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए 9155558888 और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: तो अखन अपना सब सुनित छलो है प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस, आब घर आंगन समेटबाक बेर सेहो भ गेल छ लाल बहिन। आब
4: तऽ घर आंगन के आब समेटब आ एहि ठाम अपन सब कार्यक्रम खेती गृहस्थी पसारब
3: आ किसान भाई के स्वागत करै छी। सब
4: किसान भाई के स्वागत करै छन, नमस्कार करै छन कार्यक्रम में। आ देखियो किसान भाई लोकन तऽ सब दिन खेती करै छथ किछ न किछ कर, तऽ आइ अपना सब एहन गप करब जे किछ औषधीय पौधो के सेहो खेती कयल जा सकैत अछि, किया तऽ एकर बाजार में बहुत मांग है।
3: अखन के समय में
4: जे सब आइ काल सब तब बेसी बीमारे रहै छै त किछ न किछ दवाई खाय पड़ै छन, आ ई दवाई जे से घरैया दवाई जे कहै छियै से घरैया दवाई से बहुत लाभ होइ छै।
3: गप कर रहल छी अपना सब अखन किसान भाई जेकरा आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा मानल जाइत अछि, आ किसान भाई के लेल ई बहुत नीक एकटा लाभदायक विकल्प सेहो अखन के समय में बनि गेल अछि। सतावर के जड़ के उपयोग दवाई के निर्माण में होइत अछि,
4: एकर सबसे बेसी लाभ है कम पानि में माने एकर हां उपयोग अथी कह सकै छी लगा सकै
3: उगाल जा सकै अछि, आ बाजार में तो एकर लगातार मांग बढ़ी रहल
4: सदैत बढ़ रहल छै।
3: एकरा बुझै छी लाल बहन जे औषधियों के रानी कहल जाइत अछि
4: सतावर के।
3: एकर जड़ में पाओल जाय वाला प्राकृतिक तत्व अपन सब शरीर के ऊर्जा दैत अछि, आ एकरा संग संग रोग प्रतिरोधक क्षमता के सेहो बढ़ावैत अछि। एकर खेती बलुआ दोमट माइट जाहि में पानिक निकासी खूब नीक से हुए ओ एकरा लेल उत्तम होइत अछि।
4: आ दोसर जे खेतक ओरियानक समय में जहन 2-3 बेर से एकर जोताई कऽ लेबाक चाही, आ पर्याप्त मात्रा में गोबर के खाद मिलेबाक चाही जाहि सँ माइटक उर्वरा शक्ति बढ़त। आ सतावर के खेती ओना तो बिया के माध्यम से कयल जाते है, पहिने नर्सरी में पौध तैयार कयल जाते है, पौध जखन 40-45 दिन भ जाते है तो एक ऊंचाई 4-5 इंच तक पहुंच जाते है, तखन एक खेत में लगाओ जाते है।
3: और रोपनी के समय में पौध के बीच लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखवा के चाहिए, आ खद्दा बना के ओहि में पौध के सावधानी से लगेवा के चाहिए जैसे कि जड़ के विकास नीक से भ सके। आ लाल बहिन सतावर के बाग जे छै से फरवरी से लो को जून जुलाई तक कयल जा सकैत अछि,
4: माने एखन ओकर उचित बेर छै।
3: जौं बाग सही से सही तकनीक के एकरा पालन कयल जाय तो किसान भाई एहि सब बहुत नीक उत्पादन आ बेसी से बेसी मुनाफा प्राप्त कऽ सकैत छथिन। आ नीक उत्पादन के लेल जैविक खाद के उपयोग अत्यंत लाभकारी होइत अछि, खेत ओरियान करै के समय गोबर के खाद दऽ कऽ जून जुलाई में किचुआ खाद या कंपोस्ट के उपयोग करनाई बहुत आवश्यक अछि।
4: तो किसान भाई लोग एहि तरह जगह के खेती करता।

0: बढ़िया उत्पादन हेतन आ एकर कहबे कयलहुँ बाजार मांग तऽ सब दिन बनल रहै छै तऽ निश्चित रूपसँ हुनका एहिसँ जहने उत्पादन बढ़िआँ हेतनि तऽ आमदनी बढ़िआँ हेतनि आ आमदनी बढ़िआँ होइ छै तऽ लोकके प्रसन्नता रहिते छै
1: सतावरके खेतीमे खरपतवार नियन्त्रण बड़ बेसी आवश्यक होइत अछि लाल बहिन समय समय पर कमौनी निकौनी करलासँ खाली खरपतवारे हटैत अछि संगे माइट सेहो भुरफुरा जाइत अछि जाहिसँ जड़िक विकास खूब नीकसँ होइ छै आ बुझै छी एकटा बात जे ई फसिलके खासियत ई होइत अछि जाहिमे कीट रोग बड़ कम लागैत अछि तऽ किसान भाई के खर्च आ मेहनत दुनू कम भऽ जाइत अछि
0: कीटनाशक दवाइ नहि देबऽ पड़ै
1: छै कहबे के लिए बेसी पानिओके एहिमे आवश्यकता नहि पड़ैत अछि
0: तऽ एहन काज किया नहि करब जाहिमे पानिओ कम मेहनतो कम आ खर्चो कम आ लाभ बेसी तऽ किसान भाइ लोकनि तऽ एहने विकल्प चुनबाक चाही
1: आ एकर फसल एकर जे फसिल छै से तैयार होइमे लगभग 18-20 मासके समय लागि जाइत अछि जखन पौधके बीया पाकि जाइत अछि तखन जड़िके कोरिके समय आबि जाइत अछि आ कनि ध्यान राखैके छै कोरै बेरमे जेकि जड़ि टूटै नहि आ जड़िके जे छिलका छै ओकरा हटाकऽ छाहरिमे सुखाकऽ फेर ओकरा बाजारके लेल तैयार कयल जाइत अछि
0: तऽ एहि तरहे किसान भाइ लोकनिके एकर खेती कऽ कऽ आ जड़ि निकालऽमे सावधानी रखबाक
1: चाही आ जड़ि निकाललाके तुरंत बाद ओकर छिलका हटेनाइ बड़ आवश्यक अछि कियाकि सुखेलाके बाद
0: ई नहि हटै छै जल्दी
1: कठिन भऽ जाइत अछि आ ओकरा बाद जखन सूखि जाय तखन बढ़िआँसँ एयर टाइट जाहिमे डिब्बा हवा बंद डिब्बामे पैकिंग कऽ ली जाहिसँ कि ओकर गुणवत्ता बनल रहै छै
0: तऽ देखियौ अपना सब अपन गप सब केना है आब की विचार मोनीमे
1: पहिले संदेश जे अछि से लऽ लै छी
0: तखन किछु मनोरंजन दिस चलो
2: आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स
3: बात कर की
4: हम आनंद वर्मा बोल रहे हैं
5: सवाल आपका क्या है आनंद जी
4: बजट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखे ये जानना चाहते थे
5: चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं
6: कभी कभार मटेरियल के रेट में उतार चढ़ाव लेबर के खर्च में बढ़त प्लान या डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव और ऐसी कई वजहों से आपका बजट बढ़ भी सकता है इसलिए हो सके तो अपने बजट से कम 10% ज्यादा पूंजी हाथ में रखकर चलना चाहिए
3: बात घर की
1: किसान भाई के स्वागत फिर से कह दिन संदेश के बाद लाल बहन कहले की खाली जानकारी देवे किसान भाई
0: नहीं नहीं मनोरंजन सेहो लऽ जेबनि देखियो काल के योजना से किसान भाई लोकन चाहक संग बनबै छथि आ गीत सुनैत छथि तखन तहन योजना बनै छथि काल्हि की करबाक अछि तऽ गीत जहन सुनेबनि तहन ने योजना बनतै तऽ सुनबा दै छियनि मनोरंजन करा दै छियनि चलै छियनि गीत देश तऽ सुनबा लोकनि ई लोकगीत

0: तो विदुषी शारदा सिन्हा के स्वर में ई अपना सब झूमर सुनलो आ किसान भाई के खूब निक लागल हेतन। लाल बहन अपना सब बुध दिन खेती गृहस्थी में किसान भाई के लिए कृषि गतिविधि लोग आवे छी आ वाचन आ संकलन छन सविता कुमारी के प्रस्तुति असद दाऊद के। तो सुनित छी कृषि गतिविधि।
1: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम उपस्थित छी लाल बहन नव नव जानकारी संग। प्राकृतिक खेती करबा लेल जोर देल गेल अछि, ओ रासायनिक खाद सँ की हानि होइत अछि ई बताओल गेल अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, प्राकृतिक खेती के माध्यम सँ किसान भाई लोकनि प्रसन्नता रहबे करता, संगे खेतक उर्वरा शक्ति के बढ़ेबा मे सेहो सहयोग भेटतन। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग सँ लोकक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ैत अछि, एतबे नहि एहिसँ पशुक जीवन सेहो संकट में आबि रहल अछि। कर्पूरी सभा भवन में बेनीपुर में शुक्र दिन आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में संबोधित करैत सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर कहलनि, ओ किसान भाई लोकनि के कहलनि जे प्राचीन काल में किसान प्राकृतिक तरीका सँ खेती करैत छलाह। गाय महीस के गोबर खेत में रखैत छलाह, जाहिसँ खेतक उर्वरा शक्ति बढ़ैत छल, ओहिसँ नीक उपजा होइत छल। कीटनाशक के जगह पर नीमक खल्ली खेत में रखैत छलाह, ऐसा उत्पादन जे होइत छल ओ अनाज स्वादिष्ट ओ रसायन मुक्त होइत छल। तै ओ फिर प्राकृतिक खेती करबाक लेल जोर देलनि। केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा कहलनि जे हमर सभक पूर्वज प्राकृतिक खेती कऽ कऽ नीक उपजा लैत छलाह। टायर गाड़ी, बैलगाड़ी ओ ठेला पर पशुक गोबर में मिलल मूत्र खेत में दैत छलाह,

0: प्रायसँ खेतक उर्वरा शक्ति बनल रहैत छल, ओ उत्पादन सेहो नीक होइत छल। स्थानीय विधायक सह सचेतक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी कहलनि जे रासायन युक्त खेती कयलासँ कतेको प्रकारक हानि होइत अछि, जेना खेतक उर्वरा शक्ति के कम भेनाय, ओहिसँ उपजल अन्न के सेवन कयलासँ स्वास्थ्य के सेहो हानि होइत अछि। गौर बाराम विधायक सुजीत कुमार कहलनि जे हमरा लोकनि के अपन पूर्वज द्वारा कयल गेल खेती के विधि के अपनेबाक चाही, जाहिसँ खेत तऽ स्वस्थ रहबे करत आ हमहूँ सब स्वस्थ रहब। एतबे नहि, किसान भाई लोकनि, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बिरौल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर साजिद अहमद, डॉक्टर मुकेश कुमार प्रगतिशील किसान भाई लोकनि के प्राकृतिक खेती करबाक गुर बतौलनि। वैज्ञानिक लोकनि कहलनि जे खेती में कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग कयलासँ खेतक उर्वरा शक्ति धीरे धीरे छिन्न होबय लगैत अछि, संगहि फसल के उत्पादन कम होबय लगैत अछि। तैं खेत मे यूरिया, DAP ओ कीटनाशक उपयोग नहि करबाक चाही, ई सलाह देलनि। ओ तीन मंत्र जीवाश्म, बीजा अमृत ओ निमास्त्र के उपयोग के विषय मे बतौलनि। देसी गाय के गोबर, मूत्र, गुड़, दालि के आटा के माटि के संग मिलेलासँ फसल के उत्पादन बढ़ैत अछि। बीया के रोग सँ बचेबाक लेल गोबर, मूत्र ओ चून मिलाकर छिटला पर लाभ होइत अछि। एतबे नहि, गोबर के उपयोग करबाक निश्चित रूप सँ खेत मे चाही। कार्यशाला में जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ, SDM मनीष कुमार झा, SDO धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता, BDO प्रवीण कुमार सब उपस्थित छलाह। जाले में किसान भाई लोकन के प्राकृतिक तरीका से खेती करबाक लेल कहल गेल। राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ओ विधायक जीवेश कुमार शुक्र दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के कार्यक्रम के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला के उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहिठाम महिला और पुरुष किसान के संबोधित करैत राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता कहलनि जे केंद्र सरकार किसान के सर्वांगीण विकास के लेल लगातार काज कऽ रहल अछि। प्राकृतिक खेती सँ किसान के आमदनी तऽ बढ़बे करतनि आ खर्चा कम आ पर्यावरण संरक्षण में सेहो सहायक होत। तैं हमरा लोकनि के प्राकृतिक खेती पर विशेष रूप सँ जोर देबाक चाही। आई बस अब एतबे, फिर अगला बुधि दिन फिर हम कृषि गतिविधि लऽ कऽ आयब।
1: तो किसान भाई, अखन अपना सब सुनैत छलहुँ हैं कृषि गतिविधि, वाचन आ संकलन सविता कुमारी के छलनि, प्रस्तुति असद दाऊद के। किसान भाई के बहुत ऐसा जानकारी भेटत हेतन, लाभान्वित भेल हेत अपन किसान भाई आ अपन किसान भाई के आप संगे जानकारी के मनोरंजन दिस सेहो लऽ चलिए।
0: तो आब हमरा लग सुनै छी एकटा सुंदर सन लोकगीत।

0: एखन कुमुद अखौरी के स्वर में हम लोकगीत सुनलों, आशा करै छी किसान भाई लोकन के सेहो खूब निक लागल हेतन। आ देखियो मौसम के जानकारी जहन किसान भाई लोकन के रहै छन तऽ ओहि हिसाब से अपन काज समेट लै छथि, तऽ मौसम की कहि रहल छै मुनि बहिन से पहिने अपन किसान भाई लोकन के कहि दियौ।
1: एकदम एकदम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जे 24-28 जून के मौसम के जानकारी भेटल अछि। पूर्वानुमान अवधि में उत्तर बिहारक अधिकांश स्थान पर मौसम के शुष्क रहबाक संभावना अछि, कतौ कतौ छिटपुट हल्लुक वर्षा भ सकैत अछि। ओना 28-29 जून के आसपास बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी एहि सब जगह पर मेघ गर्जन आ वज्रपात के संगे अनेको स्थान पर नीक वर्षा हेबाक अनुमान अछि। औसतन अधिकतम तापमान जे छै से 35-37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना छै आ न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना बनि रहल छै। तऽ किसान भाई के आगामी किछु दिन में मानसून के कमजोर स्थिति के देखैत सलाह देल जाइ छै कि ओ उचास जमीन में अखन खरीफ धान के बीज स्थली तैयार करै के काज फिलहाल अखन नहीं करैत। जे किसान भाई के पास पटौनी के समुचित व्यवस्था छैन ओ नीचा वाला भूमि में मध्यम अवधि

0: वलधानक किस्म जेना राजेंद्र नीलम, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सरस्वती आ राजेंद्र श्वेता के बीचरा बीज स्थली में खसाबे के काज कर लेथिन, नर्सरी तैयार करे के काज अखन कह सके छथिन। बीज स्थली में पर्याप्त मात्रा में नमी बनौने रखवा के संगे पौध के सूखे से बचेवा के लेल जतेक आवश्यकता हो उत्तेक जीवन रक्षक पटौनी करत रहत,
1: जैसे कि नमी बनल रहे। देखियो किसान भाई लोग न तो खेत के तैयारी बहुत कह लेने छथि, आ जिनका बाकी छन तो से खेत के तैयारी में लग जाए, आ बहुत गोटा के बिचरा भ गेल छन, आ दो तीन दिन पहले जह कनेको पानि भेल है तो बहुत किसान भाई लोग तो रोपि लेल, मुदा वह कहलिए जीवन रक्षक पटौनी, किया तो मानसून तो कमजोर है, बरखा तो समय पर भ नहीं रहा है, तो हल्लुक पटौनी करत रहता तखने वो पौध जीवित रहत।
0: वर्तमान में अखन कमजोर मानसून परिस्थिति के देखत किसान भाई के सलाह देल जाए कि ऊंच वाला स्थान पर धानक जगह पर राहरि आ उड़ीद एहन वैकल्पिक फसल के खेती अपना सके,
1: जेमे पानि कम लागे। आ देखियो अपना सबके जे कार्यक्रम में अब खेती गृहस्थी अब एकर बेर सम्पन्न भ रहल है, तब एकरा हम सब समेटी आ किसान भाई लोकन से चलवा आज्ञा ले छी। नमस्कार मोनी बहन।
0: नमस्कार लाल बहन।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
1: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट में राज्य में विकसित भारत जीरामजी योजना की निगरानी के लिए बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पुनर्गठन और गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक चयनित पंचायत से 28 जून को इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में भूमि सुधार का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीरपैंती पावर प्लांट CNLU

0: निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधार

0: शासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा का विस्तार, विशेष सर्वेक्षण, भूमि विवाद के त्वरित निपटारे और भूमिहीन परिवार को पुनर्वास जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन है। श्री तिवारी ने कहा कि भोजपुर मुठभेड़ मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
2: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहाँ जहाँ से आया वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही, और एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पे कार्रवाई होगी।
1: इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हाल में हुए सभी मुठभेड़ के मामलों की जांच होनी चाहिए।
3: जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है तो खास करके इनकाउंटर का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है। सरासर गलत है, इस पे विशेष इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए।
1: आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को लेकर सतर्क है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सदा ने कहा कि विभागीय अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 3 महीने में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 3 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा। श्री प्रसाद आज पटना स्थित नियोजन भवन में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।
4: आज हम सब लोग मिलकर एक और निर्णय ले रहे हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत को हम बाल श्रम मुक्त करेंगे पूरी तरह से, और वहां शपथ कराएंगे कि अब इस पंचायत में कोई बाल श्रमिक नहीं है। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करेंगे तो पूरा राज्य बाल श्रम मुक्त हो जाएगा।
1: केंद्रीय चयन परिषद की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया, इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अभ्यर्थियों से इन ट्रेनों की परिचालन समय की सटीक जानकारी लेकर इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की है। अररिया जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने दोनों पालियों के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख 26 जून को यौम आशूरा मनाया जाएगा। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों ने आज फ्लैग मार्च किया है। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद समेत विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सासाराम में जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने आज मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कटिहार जिले के कोलासी ओपी थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक दुकान के सामने कोल्ड ड्रिंक के कैरेट से 5 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम मिलने की सूचना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। विशेष निगरानी इकाई ने चर्चित टेंडर घोटाला मामले में मास्टरमाइंड ऋषु श्री समेत 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एडीजी निगरानी पंकज दराद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निगरानी इकाई के पास इन सभी के खिलाफ ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो समय आने पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आजमनगर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आरोपी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 के लिए बिहार के 2 पैरा एथलीटों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। नालंदा के झंडू कुमार और गया के सोमन राणा 23 जुलाई से 3 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 2 अक्टूबर से दिसंबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पटना में खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन ने जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नए जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसेप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं की समस्याओं, रोजगार सृजन और उद्योग स्थापना को लेकर चर्चा की। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज निर्मली अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजस्व और लोकहित से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। किशनगंज जिले के टेढ़ागांच स्थित बालिका विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर जागरूक

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत

0: कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल की जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक में जिले में चल रही खनन गतिविधियों, बालू घाटों की स्थिति और खनिज परिवहन पर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉट की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: नालंदा जिले की सदियों पुरानी और विश्व विख्यात हस्तकरघा कला बामन बूटी साड़ी और फैब्रिक को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिल गया है। नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से मिली यह उपलब्धि न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई इस मान्यता से बामन बूटी की मौलिकता और विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा। GI टैग मिलने के बाद अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय बुनकरों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इस उपलब्धि पर ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बुनकरों को बधाई दी और कहा कि जीविका सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से बामन बूटी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इधर खरीफ 2026 सीजन को लेकर जिले में कृषि गतिविधियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,53,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें धान उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 1,47,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून और समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध होने पर जिले में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इधर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, मिट्टी जांच, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंडों में शारदीय खरीफ महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग ने इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राजगीर प्रखंड के चयनित किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस नकदी फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और कम समय में बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। बिहार शरीफ शहर की सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अमृत 2 योजना के तहत बिहार शरीफ स्मार्ट के लिए इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लगभग

0: 101 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य गंदे पानी को बिना उपचार के नदियों और नालों में जाने से रोकना है। परियोजना के पूरा होने पर जल जमाव की समस्या में भी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी मजबूती मिल रही है। 226 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 173 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष इकाइयों पर कार्य जारी है। इन इकाइयों में गीले कचरे को नाडेप विधि से जैविक खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। परबलपुर, नगरनौसा, बेन और कराय पसुराय प्रखंड की कई पंचायतों में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ेगी, वही किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। राजगीर में आयोजित विश्व विख्यात राजकीय मलमास मेला 2026 का सफल समापन हो गया। एक महीने तक चले इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश से पहुंचे करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कुंड सहित विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे मलमास के दौरान राजगीर की पंच पहाड़ियां, मंदिर, मठ और साधु संतों के आश्रम श्रद्धा और भक्तिमय रहे। प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या ने इस वर्ष कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 5,000 पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इधर मिशन निपुण बिहार के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आगामी 1 से 7 जुलाई तक जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पठन पर्व आयोजित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है,
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: पहले तुम,
4: पहले तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम,
4: तुम,
5: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
4: अच्छा मैं कहती हूँ

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉबी में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था जतिन ललित ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

दो रास्ते। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

नमस्कार, मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार में अपने समस्त सुधी श्रोता बंधु के आत्मिक स्वागत है। श्रोता बंधु, मैथिली कर नाट्य परंपरा अत्यंत समृद्ध रहल है। मैथिली में प्राचीन काल से नाट्य लेखन होइत आबि रहल है। प्राचीन काल माने मैथिली साहित्य कर प्राचीन काल। एहि प्राचीन कालक जे सिंह द्वार ताहि ठाम विराजमान छथि कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जैकि प्रथम गद्य साहित्य लोक ज्योतिरीश्वर उपस्थित भेलाह, तैं हिनके एहि सिंह द्वार पर हमरा लोकनि विराजमान पबैत छी। ज्योतिरीश्वर के एहि कालखंडक सिंह द्वार पर एहु दुआरे विराजमान पबैत छी जे नाट्य सर्जन कर क्रम सेहो यह आरंभ करैत छथि। सर्वप्रथम हिनके नाट्य कृति उपलब्ध होइत अछि धूर्त समागम। आलोचक लोकनि एकरा प्रहसन मानलनि अछि। प्रहसन हास्य प्रधान रूपक थिक। सामान्यतया प्रहसन के नाटके कर भेद मानल जाइत अछि। काव्य शास्त्रीय दृष्टि सँ असल में एहन थिक नहि। प्रहसन आ नाटक ई दुहू तो रूपके कर भेद थिक। दृश्य काव्य कर दू भेद होइत अछि, रूपक आ उपरूपक। रूपक कर 10 गोट भेद होइत अछि, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामृग, अंक, विधि आ प्रहसन। उपरूपक कर 18 भेद थिक, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य रासक, प्रेंखण, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीस आ भणिका। से मैथिली नाट्य साहित्य प्रहसन सँ अपन यात्रा आरंभ करैत अछि। 12 गोट मैथिली गीत सँ समन्वित धूर्त समागम कर पश्चात महाकवि विद्यापति विरचित गोरक्ष विजय उपलब्ध होइत अछि। ओना विद्यापति कर नाट्य कृति मणिमंजरी सेहो थिकनि। विद्यापति मैथिली साहित्य कर मध्यकालक महानायक थिकाह। एहि कालखंड में उमापति उपाध्याय कर पारिजात हरण

0: उपलब्ध होइत अछि जे श्रीमद् भागवत केर ओहि कथानक पर आधारित अछि जाहि मे नारद सँ प्राप्त पारिजात पुष्प श्री कृष्ण रुक्मिणी के दैत छथि आ एहि सँ सत्यभामा रुष्ट भऽ जाइत छथि। ओ श्री कृष्ण सँ मान कऽ बैसै छथि। हुनकर मान मुंचन लेल श्री कृष्ण इंद्र सँ युद्ध कऽ पारिजात वृक्ष के हरण कऽ अनैत छथि। पारिजात हरण में मैथिली गीत कर प्रयोग बहुलता सँ भेल अछि आ ई गीत सब अत्यंत चर्चित रहल अछि। एहि में प्रयुक्त एकटा गीत रचना के देखल जा सकैत अछि जे सत्यभामा जखन मान कऽ बैसैत छथि तो दूती श्री कृष्ण सँ हुनकर विरहावस्था केर वर्णन करैत कहैत छथि। कि कहब माधव तनिक विशेषे अपनहु तन धनि पाव कलेशे अपनुक आनन आरसि हेरी चानक भरम कांपकत बेरी भरमहु नियकर उर पर आनी परसे तरस शरीरुह जानी चिकुर निकरनीय नयन निहारी जलधर जाल जानी हिय हारी अपन वचन पिक रव अनुमाने हरिहरि तेहुपरि तेजय पराने माधव आबहु करिय समधाने सुपुरुष निठुर न रहय निदाने सुमति उमापति भन पर माने माहे शरदेई हिंदूपति जाने। उमापति उपाध्याय केर पश्चात शिवदत्त केर नाट्यकृति उपलब्ध होइत अछि। इहो पारिजात हरण नामे सँ एहि कृति केर रचना कयलनि। सरस कवि रामदास उपाध्याय केर आनंद विजय नाटिका में गीत कहि कऽ 26 गोट गीत रचना केर निवेश कयल गेल अछि। ई श्रृंगार प्रधान नाटिका थिक जे राधा माधव केर स्नेह पर आधारित अछि। एकर गीत पर विद्यापति केर प्रभाव सेहो दृष्टिगत होइत अछि। रामदास राधा केर रूप सौंदर्य केर वर्णन करैत जे गीत रचना एहि में समाविष्ट कयलनि अछि से एहि प्रकारे थिक। दिल पर वेश परम सुकुमार हंस गमनि बृख भानु दुलार तनु अनुपम रे वदन सानंद दामिनी ऊपर उगली जिमि चंद नासा ललित नयन नहि थीर जन तिल फूल दुह दिय अलि फीर अधर सँ ढरय दसन धन ज्योति नवदल बेढ़लि जनि गज मोति भांग जाइत कुछ भरि परिनामे तैं दहु तिविलि गुणे बांधलि कामे सरस राम भन राधा रूप रसबुझ रसमय सुंदर भूप। श्रोतबंधु रामदास कर पश्चात भानुनाथ कर प्रभावती हरण कान्हाराम आ लाल कवि कर गौरी स्वयंवर शिवदत्त कर गौरी परिणय नंदीपति कर कृष्ण केली माला कवि गोविंद कर नलोदय रमापति कर रुक्मिणी हरण गोकुलानंद कर मानचरित कर्ण जयानंद कर रुक्मांगद श्रीकांत गणक कर श्रीकृष्ण जन्म रहस्य रत्नपाणी कर उषाहरण आ हर्षनाथ कर उषाहरण आ माधवानंद आदि नाट्य कृति कर सर्जन एहि कालखंड में भेल। एहि नाट्य कृति सब में सँ प्रायः कर भाषा संस्कृत प्राकृत थिक। एहि सभ में गीत मैथिली कर रहल। ओना एहि समय में रचित शिवदत्त केर गौरी परिणय में संस्कृत उपराकृत में कथोपकथन नहि भ कऽ सब किछु गीते केर माध्यमे संपादित भेल अछि। एहि प्रकारें कान्हाराम केर कृति गौरी स्वयंवर में सेहो पद्य श्रृंखले केर माध्यमे सब किछु संपादित भेल अछि। ई तऽ स्वाभाविके कि नहि, कारण मिथिला केर जनजीवन संपूर्ण रूप सँ गीतमय रहल अछि। मुदा एते काल बीति गेल आ अपना सभक कार्यक्रम सिंगरहार में कोनो गीतनाद नहि भेल, से तऽ आब सहज नहि लगैत अछि। तऽ सबसँ पहिने एहि असहजता के एहि गीत कर माध्यमे समाप्त करैत छी।
1: आजो नाथ एक

श्रोता बंधु, अखन हमरा लोकन सुनि रहल छलहुँ राम कुमार मल्लिकर स्वरमे ई विद्यापति गीत। आ आब साहित्य साधक आई पंडित गोविंद झा। पंडित गोविंद झा बहुआयामी लेखन व्यक्तित्व कर धनी साहित्यकार थिकाह। प्रख्यात भाषाविद पंडित गोविंद झा संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी आ हिंदी तो निविष्ट विद्वान थिकाहे। प्राकृत, बंगला, असमी, उड़िया आदि भाषा में सेहो सिद्धहस्त रहलाह। इजेहने कुशल नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार आ समालोचक छथि। तेहने विशिष्ट भाषा शास्त्री, वैयाकरण, साहित्य शास्त्र वेत्ता, अनुवादक आ संपादक थिकाह। जखन 1954 में अपन नाटक बसात ल क उपस्थित होइत छथि तो अपना के सिद्धहस्त नाटककारक रूप में प्रतिष्ठित करबा में सफल रहित छथि। हिनक नाटक राजा शिव सिंह आ अंतिम प्रणाम सेहो हिनक नाट्य प्रतिभा के सब प्रमाण उपस्थित करैत अछि। उपन्यास कर सर्जन करैत छथि तो महाकवि विद्यापति के केंद्रित को प्रामाणिक ग्रंथ विद्यापतिक आत्मकथा लिखी जाइत छथि। हिनक लेखनी कथा लेल उठैत छनि तो सामाक पौती सन कथा संग्रह के साकार करैत छनि, जाहि पर 1993 में हिनका साहित्य अकादेमिक पुरस्कार सँ अभिनंदित कयल जाइत छनि। नख दर्पण नाम सँ एकटा आरो कथा संग्रह प्रकाशित छनि। पंडित गोविंद झा कर लेखनी कहियो विश्राम नहीं लेलकनि आ एकरे परिणाम भेल जे हिनक पोथी केर अमार लागि गेल। से विभिन्न भाषा में मुदा सभक केंद्र में मातृभाषा मैथिली अवश्य रहल। से जखन हिंदी में मैथिली भाषा का विकास पोथी केर सर्जन करैत छथि तो मैथिलीक स्वतंत्र सत्ताक संस्थापन में अपन महती अवदान दैत छथि। भाषा विज्ञान आ व्याकरण से संबंधित हिनकर पोथी मैथिलीक उद्गम ओ विकास, मैथिली परिशीलन, भाषा शास्त्र प्रवेशिका, उच्चतर मैथिली व्याकरण प्रकाशित छनि। पंडित गोविंद झा शास्त्रीय ग्रंथ मैथिली छंद शास्त्र ल क सेहो उपस्थित होइत छथि तो आत्मकथा जन्म अवधि हम, निबंध ओ संस्मरणक पोथी आत्मालाप, अतीतालोक, अनुचिंतन, जीवनिका कर पोथी गोविंद दास आ उमेश मिश्र, समीक्षा विवेचन कर पोथी मैथिलीक समस्या, मैथिली नाटक अधुनातन संदर्भ, मिथिलाक सामाजिक इतिहास, श्रोत्रिय समाज ओ पांडित्य परंपरा सन ग्रंथ रत्न सेहो पाठक लोकनि कर समक्ष रखैत छथि। पंडित गोविंद झा कुशल अनुवादक सेहो थिकाह। विभिन्न भाषा सँ अनेक शह पोथी कर अनुवाद सेहो कयने छथि। हिनका साहित्य अकादेमिक अनुवाद पुरस्कार सेहो प्राप्त छनि। 1993 में साहित्य अकादेमिक मूल पुरस्कार कर संग नेपाली साहित्यक इतिहास पोथी लेल अनुवाद पुरस्कार सेहो प्रदान कयल गेलनि। हिनक अनुवाद कार्य में प्रमुख अछि संस्कृत सँ मैथिली में अनुवादित मालविकाग्निमित्र, ग्रियर्सन कर गीत दीना भद्रिक ओ गीत नेबारक, ग्रियर्सन कृत मैथिली व्याकरण, जीवनी चंडीदास।

इतिहास ग्रंथ पूर्वकालीन भारतीय समाज, प्राचीन भारत, असमी उपन्यास पाताल भैरवी आ असमीय सँ अनुदित ओ बाबा की बउआ। पंडित गोविंद झा बहुत रास पोथी कर संपादन सेहो कयने छथि। हिनक संकलित संपादित पोथी सब सेहो भाषिक साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि। हिनक अनुदित, संस्कारित, संपादित, संकलित पोथी सब में प्रमुख छनि विद्यापति कर कृति विभाग सार, गया पत्तलक, ब्याड़ी भक्ति तरंगिणी, वर्षकृत्य, विद्यापति गीतावली, विद्यापति गीत समग्र, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, गोविंददास भजनावली, पूर्वांचलीय गीत साहित्य, भाषा आ समाज, शिखरिणी, कल्याणी कोश, विद्यापति शब्दकोश, जयकांत जयंतिका आदि। एहिमे सँ कतिपय ग्रंथ संघ संपादनक सेहो छनि। पंडित गोविंद झा मैथिलीक संग संस्कृत शब्द शास्त्र

0: आकर गोविंददास भजनावली पूर्वांचलीय गीत साहित्य भाषा आ समाज शिखरिणी कल्याणी कोश विद्यापति शब्दकोश जयकांत जयंतिका आदि एहिमे सँ कतिपय ग्रंथ संघ संपादनक सेहो छनि। पंडित गोविंद झा मैथिलीक संग संस्कृत शब्द शास्त्र भूषण सार दीपिका में सेहो अपन अवदान देने छथि। तँ बांग्ला मैथिली अभिधान आ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन आदि पोथी हिनक अक्षर चेतना केर साक्षी बनल अछि। ई अपन पिता महावैयाकरण दीन बंधु झा केर पोथी मिथिला भाषा विद्योत्तन केर संपादन प्रकाशन सेहो कयने छथि। पंडित गोविंद झा अपन बहुमूल्य अवदान लेल विभिन्न सम्मान सँ अभिनंदित सेहो कयल गेला। साहित्य अकादमीक अतिरिक्त हिनका बिहार सरकारक राजभाषा विभाग सँ 1988 में कामिल बुल्के पुरस्कार, चेतना समिति सँ ताम्रपत्र, 2001 में बिहार सरकार सँ ग्रियर्सन पुरस्कार आ 2005 में प्रबोध साहित्य सम्मान प्रदान कयल गेलनि। एकरा सभक संग अक्षर साधक पंडित गोविंद झा के 1997 में अभिनंदन ग्रंथ अर्चा ओ चर्चा सेहो समर्पित कयल गेलनि। साहित्य अकादमी दिस सँ हिनक वयस केर 100 बरखक पूर्ण करबा केर उपलक्ष्य में संगोष्ठीक आयोजन सेहो कयल गेल। पंडित गोविंद झा केर जन्म संस्कृत मैथिली केर प्रख्यात विद्वान महावैयाकरण पंडित दीन बंधु झा आ जागेश्वरी बहुआ सिंहकर पुत्र रत्न रूप में मधुबनी जिला कर इसहपुर गाम में बैसाख कृष्ण दशमी तदनुसार 24 अप्रैल 1922 के भेल छलनि। ओना हिनका प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि छनि 10 अक्टूबर 1923 आ साहित्य जगत में यह प्रचलित अछि। पंडित गोविंद झा केर शिक्षा दीक्षा केर मूलाधार संस्कृते रहलनि, मुदा अपन प्रतिभाक बले आन आन भाषाक सेहो अधिकारी विद्वानक रूप में सुप्रतिष्ठित भेलाह। शब्दकोश सहायकक रूप में आजीविकाक आरंभ कैनिहार पंडित गोविंद झा राजभाषा विभाग में शब्दावली सहायक, राजभाषा पदाधिकारी आ उपनिदेशक, मैथिली अकादमी में उपनिदेशक कर पद के सेहो सुशोभित कयलनि। लेखन सँ कहियो विरत नहि भेला, अपना के वर्तमानक संग सदिखन जोड़ी कर रखलनि। से लेखन में सेहो आ वैज्ञानिक साधन के अपनेबा में सेहो। सोशल मीडिया पर हिनक सक्रियता में हिनक वयस बाधक नहि बनलनि आ जीवनक अंतिम प्रहर धरि एहि पर सक्रिय रहलाह। पंडित गोविंद झा असल अर्थ में शब्द शिल्पी रहलाह। से भाषावेत्ताक रूप में सेहो आ साहित्यकारक रूप में सेहो। पंडित गोविंद झा 101 बरखक वयस में 18 नवंबर 2023 के एहि नश्वर संसारक त्याग कयलनि, मुदा ओ अक्षर जगत में देल गेल अपन अमूल्य अवदान में सदिखन अमर छथि। विभिन्न साहित्य कृतिकर संग अपन कविता में सेहो मुखर छथि। पंडित गोविंद झाक कविता क्षेत्र में देल गेल योगदानों आने आन विधा जका महत्वपूर्ण अछि। हिनक कविता संग्रह सेहो प्रकाशित छनि प्रलाप। साहित्य साधक कर पश्चात आव सुनै छी तारानंद झा तरुण सँ हुनकर काव्य पाठ।
1: करी संकल्प निज मन में बनी हम प्रगति पथचारी, रह निज लक्ष्य प्राप्ति के हित हमर संघर्ष नित जारी। करी संकल्प निज मन में बनी हम प्रगति पथचारी, रह निज लक्ष्य प्राप्ति के हित हमर संघर्ष नित जारी। अपन अधिकार केर संगहि अपन कर्तव्य हम जानी, करी ओ काज जीवन में हुए जे राष्ट्र हितकारी। अपन अधिकार केर संगहि अपन कर्तव्य हम जानी, करी ओ काज जीवन में हुए जे राष्ट्र हितकारी।

0: तजी आलस्य कैं सदिखन बनी श्रम केर पुजारी हम मनोबल पैग हम राखी बनी निज शत्रु संघारी। तजी आलस्य कैं सदिखन बनी श्रम केर पुजारी हम मनोबल पैग हम राखी बनी निज शत्रु संघारी। क्यो नहीं पैघ आ नहीं अछि क्यो छोटे एत जानू मेटा कें भेद मन केर सब रही मिली आई भैयारी। क्यो नहीं पैघ आ नहीं अछि क्यो छोटे एत जानू मेटा कें भेद मन केर सब रही मिली आई भैयारी। रही हम स्वाभिमानी बनी करी नहीं काज किछु अनुचित बनाबी योजना सुंदर भविष्यक हेतु सुखकारी। रही हम स्वाभिमानी बनी करी नहीं काज किछु अनुचित बनाबी योजना सुंदर भविष्यक हेतु सुखकारी। अयाची केर थी कहूँ वंशज जकर इतिहास अछि साक्षी रही दाता सदति बनिकें बनी नहीं दीन दुखियारी। थी कहूँ हम तरुण भारत केर रही हिम्मत बढ़ौने सब सफल जीवन बने बाहित बनी हम वीर व्रतधारी। थी कहूँ हम तरुण भारत केर रही हिम्मत बढ़ौने सब सफल जीवन बने बाहित बनी हम वीर व्रतधारी। करी संकल्प निज मन में बनी हम प्रगति पथचारी रह निज लक्ष्य प्राप्ति के हित हमर संघर्ष नित जारी।
1: तारानंद झा तरुण कर काव्य पाठ अखन हमरा लोकन सुन रहल छलाऊ। चलू आगा डेग बढ़ाबी आ करी शब्द विमर्श। आरंभ करे छी अपैत शब्द सँ। अपैत कहे छी जे वस्तु छूटल भेल तकरा किंवा दूषित के। हे अपैत हाथे बासन नहीं छुबू माने दूषित हाथे बासन कर स्पर्श नहीं करू। आ अबाह श्रोता बंधु अबाह कहे छी दुर्बल के। की कहे छी हमर बामा हाथ बड्ड अबाह अछि माने कमजोर अछि दुर्बल अछि। आ अबाह एहनो स्थान के कहे छी जाहि ठाम भय होइत अछि। मानवेतर शक्ति कर कल्पना हमरा लोकनि करे छी तकर संभावना जतौ होइत अछि तकरो कहे छी अबाह। हे हुनकर गाछी बड्ड अबाह ओहिठाम ओरिया कऽ जायब। आ अमनिया अमनिया भेल पवित्र। आ उपयोग जाहि वस्तु कर नहि कयल गेल बासन के विशेष कऽ तकरा सेहो कहे छी अमनिया। यौ हमर एहि लोटा के एखन छूछा नहि करब अमनिया छै पूजा भऽ जेतै तकर बाद एकर उपयोग करब। आ अमार अमार भेल ढेरी। फल्लाँ वस्तु केर अमार लागि गेल हुनका धन बीतक अमार लागल छनि माने ढेरी धन बीत छनि। आ श्रोता बंधु जँ एकरा कऽ दी अमारी तऽ अमारी कहै छी हाथी पर जे हौदा कसल जाइए तकरा। आ शब्द विमर्श कर समापन करै छी अतत्तः शब्द सँ। अतत्तः भेल पराकाष्ठा सीमा सँ बेसी। अनर्गल जे करै छथि तकरो कहै छै अतत्तः केनाय। हे ओ सदिखन अतत्तहे करैत रहै छै माने अनर्गल करैत रहैए अथवा पराकाष्ठा करैत रहैए सीमा सँ बेसी करैत रहैए। आ श्रोता बंधु आब जँ अपना सब सिंगरहार कार्यक्रम के एतहि नहि समेटब तऽ घड़ी सेहो कहत जे हमरा लोकनि अतत्तह कऽ रहल छी। तक विदा लेबा सँ पूर्व अपने सँ आग्रह जे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार अपने के केहन लगैत अछि एहिमे की संशोधन परिवर्धन चाहै छी से हमरा लोकनिकें अवश्य लिखी पठाबी। हमरा लोकनिकर पता थिक कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिनकोड 8460004। आब अमलेंदु के देल जाए अनुमति। नमस्कार।

0: मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर संध्या 6:30 पर।
0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
3: It is really our responsibility.
4: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
5: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है

0: कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
1: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: I also refer to the unwarranted...
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
2: It has always been, is and will remain so.
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत

जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: for today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reviews progress of trade talks with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer. External Affairs Minister S. Jaishankar meets his South Korean counterpart Cho Hyun in Seoul, calls for stronger India-South Korea ties amid global challenges. Oman announces opening of a temporary maritime corridor through Strait of Hormuz. 5 people killed after under-construction godown crashes in Kolkata, rescue efforts in full swing. Heavy rain triggers flash floods in Arunachal, high alert issued in Assam. And in FIFA World Cup, Canada to take on Switzerland in a Group B match at Vancouver tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शो ह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने आबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेरे तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के सबब अचानक सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती उमूर के नुमाइंदे सफीर जेमिसन ग्रेयर और उनके वफद के साथ आज सुबह सिलसिलेवार मीटिंगें की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंगों में भारत और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुजाकरात की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी शराकतदारी को मजीद गहरा करने के मौके के इम्कान की तलाश की गई। उन्होंने सफीर ग्रेयर की क्यादत और बातचीत को एक तामीरी समत अता देने की फाल कोशिशों की सताइश की। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी के फ्रेमवर्क के तहत दिफाई ताउन की तरक्की में पेशरफ्त की गरज से आज एक मीटिंग की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत दिफा ने मुत्तला किया कि मीटिंग की मुश्तरका सदारत बैनुल अक्वामी ताउन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मारजूकी ने की। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि तबादला ख्याल में दिफाई सनती शराकतदारी को वसत देने, इख्तरा को फरोग देने, जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने और बहरी सलामती में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों के दौर में भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना नहायत अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुश्तरका अकदार और बाहमी एतमाद रखने वाले मुल्कों को एक दूसरे के साथ ज्यादा करीबी ताउन करना चाहिए। सियोल में जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चो ह्यून के साथ मीटिंग के आगाज में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा बैनुल अक्वामी हालात काबिल एतमाद शराकतदारों के दरमियान ताउन को पहले से ज्यादा अहम बना रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम जनूबी कोरिया के कौमी सलामती के डायरेक्टर वी संगलेक से भी मुलाकात की। बाद में सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान आलमी हालात और वाकयात और भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक अहम स्ट्रेटेजिक उमूर पर मुफीद और नतीजा खेज बातचीत हुई। ओमान ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुस के जरिए आर्जी बहरी राहदारी को खोले जाने का ऐलान किया है। ये इकदाम तिजारती बहरी नकलो हमल की बहाली और इस बहरी बहरान को कम करने की जानेब एक अहम कदम करार दिया गया है, जिसके बाइस खलीज में हजारों समुद्री कारकुन फंसे हुए थे। ओमानी हुकूमत के मुताबिक ये मनसूबा अक़्वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़्वामी बहरी तंजीम आईएमओ के ताउन से तैयार किया गया है, ताकि इलाकाई तनाज़ात से पैदा होने वाली कई माह की रुकावटों के बाद आबी गुजरगाह से जहाजों की महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
3: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
2: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
3: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
2: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
3: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
2: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल, तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
3: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी,

0: बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें दो बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ए मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण

0: गया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था। तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
1: जी जी।
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए, और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, की देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है, कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
0: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी,
0: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
0: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं, और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं, और उन बच्चों को वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से या आसपास के बच्चे हो

0: जी
1: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
0: जी,
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉटपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा

0: हाथ नहीं है, तो
1: जी
0: पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6th से लेकर 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पड़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक। फिर
1: जी जी
0: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है, जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी भेजते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ, और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, जिसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
0: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
0: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है। उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खास तौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
2: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में। आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इस इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
2: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर
1: बिल्कुल
2: सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ। एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने।
2: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
2: It was something that I never dreamt of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत

0: लगा लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट.
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सर.
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल. वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है. तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे. वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा. हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया. बताएं अपने बारे में कुछ.
2: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था. बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर. बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा. बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना. फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में. फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया. वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए. उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था. तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको, बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, कि हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ ही कैन डू, ही कैन सर्वाइव. तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम. तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा. और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सब की हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी नाइक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, भूल भी पा रहा है आराम से. तो काफी था ये समय. फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन मिला था सोशल वर्क में. तो मेरे सुपरिटेंडेंट्स रहते मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया. काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो. तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा.
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है. हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हमने, हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
2: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए. उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सकेगी, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी.
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से. सुमन सरकार एक तबला वादक हैं, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है. बहुत स्वागत है सुमन आपका.
3: सर आपको बहुत धन्यवाद.
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं.
3: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था. तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जब कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था, मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे, मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे. तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू

0: जी
1: जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है, तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेट कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ, तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट चेस प्रोग्राम था, कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत जी, जी. का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
0: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
1: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं, यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर। जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
1: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहेबिलिटेशन सोल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सोल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सोल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है। जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी।

लोक माधुरी सुनने वाले सभी श्रोताओं को गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का नमस्कार। मिथिला का लोक जीवन अनेक परंपराओं से भरा है। शादी विवाह के रस्मों की परंपरा हो, किसी संस्कार रस्मों की परंपरा हो, या जन्म मृत्यु के रस्मों की परंपरा हो, आदि सभी परंपराओं का निर्वहन यहाँ बढ़ चढ़ कर होता रहा है। कोई भी परंपरा यूं ही नहीं होती, इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कुछ परंपराओं के पीछे धार्मिक कारण होता है तो कुछ परंपराओं के पीछे कोई घटना होती है। कारण जो भी हो वो सामने नहीं आता, सामने आती है तो वो है परंपरा, जिसका निर्वहन लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। परंपराओं के निर्वहन में बुजुर्गों की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी परंपरा का निर्वहन कब और किस तरह होगा, और वे आगे बढ़कर इसका निर्वहन करते हैं। आज बहुत सी परंपराओं का निर्वहन नहीं हो पाता, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ आधुनिकता का प्रभाव है तो कुछ जानकारी का अभाव। परंपराएं छूटे नहीं, इसका निर्वहन होता रहे, इसके लिए सबसे आवश्यक है अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। जब हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे तभी परंपराओं को भी जानेंगे, उसके महत्व को भी समझेंगे और इसके निर्वहन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं भगवती गीत। मिथिला में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवती की आराधना की परंपरा रही है। यहाँ के लोगों में भगवती के प्रति असीम श्रद्धा रही है। भगवती की पूजा के अवसर पे, किसी शुभ कार्य के अवसर पे ये श्रद्धा उभर कर सामने आ जाती है। यहाँ के लोगों में ये अटूट विश्वास रहा है कि किसी काम को करने से पहले भगवती को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के सफल हो जाता है।

मिथिला और आसपास के क्षेत्रों में बच्चे के जन्म पे सोहर बधैया गाने की परंपरा रही है। सोहर बधैया गीत के माध्यम से नवजात के लंबी उम्र की कामना की जाती है, बड़ा होकर जग में नाम कमाने का आशीर्वाद दिया जाता है, साथ ही अधिकार पूर्वक बधैया की मांग की जाती है। पमड़ियों का तो नवजात के घर जाकर बधैया गीत गाना, बधैया मांगना मुख्य कार्य रहा है। सोहर बधैया गीत गाने, अधिकार पूर्वक बधैया की मांग करने में नवजात की फुआ की भावना देखते ही बनती है।

मिथिला में होने वाले विवाह में अनेक परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। यहाँ विभिन्न जाति के लोगों के विवाह की कुछ अपनी अपनी परंपराएं हैं, कुछ अपनी अपनी रस्में हैं, जिसे पूरे उत्साह के साथ निभाए जाते हैं। ये रस्में, ये परंपराएं यहाँ के विवाह की एक अलग पहचान देते हैं। विवाह अवसर पे रस्मी गीतों की परंपरा विवाह अवसर को और भी उत्सवी बना देता है।

मिथिला में समदौन गीत की अपनी परंपरा रही है। किसी भजन कीर्तन के समापन का समय हो या विवाह के समापन के बाद बेटी की विदाई का अवसर आदि, ऐसी विदाई के अवसर पे समदौन गीत गाए जाते रहे हैं। समदौन के माध्यम से विदाई के प्रति उमड़ती भावनाएं सामने आती है। इस गीत के राग और स्वर में इतनी भावुकता होती है जो किसी के भी हृदय को छू ले।

मिथिला के लोक जीवन में निर्गुण गीत का अपना ही महत्व है। जीवन के बंधन से मुक्त होने पे अंतिम विदाई के समय यहाँ निर्गुण गाने की परंपरा रही है। निर्गुण सांसारिक मोह माया से बाहर निकालकर उस परम सत्य की ओर ध्यान ले जाने का प्रयास करता है, जहाँ ना कोई अपना है, ना कोई पराया, ना कोई लोभ है, ना कोई मोह। इसीलिए निर्गुण सांसारिक मोह और विच्छो से परे होते हैं।

इसके साथ ही लोक गीतों का विशेष कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आपने जिन कलाकारों के गीतों को सुना उनके नाम इस प्रकार हैं: रागिनी कुमारी, विमला तिवारी, स्नेहा वर्मा, अशोक कुमार पासवान और साथी। आलेख और वाचन गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव का था और प्रस्तुतकर्ता थे रणधीर ठाकुर। तो अब कार्यक्रम से मुझे यानी गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव को दें अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक माधुरी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

सुर, ताल और आवाज के इस खूबसूरत संगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जिंदगी के फलसफे में अगर संगीत ना हो तो रंग फीके फीके लगते हैं। आज इन्हीं रंगों को बिखेरने और कार्यक्रम को संगीतमय बनाने के लिए हम लेकर आए हैं गीतों के रंग। संगीत वो भाषा है जो शब्दों से परे सीधे दिल को छू लेती है। आज के इस कार्यक्रम में गीतों के रंग में आप सुनेंगे मोहब्बत से सजे पुराने नगमे, कुछ नई धड़कने और वो तराने जो आपकी यादों को ताजा कर देंगे। हर गीत एक नया रंग लाएगा और हर सुर आपके दिल को छू जाएगा। स्वीकार करें अपने रेडियो मित्र भवेश की ओर से प्यार भरा नमस्कार।

जब पलकों के उठने झुकने से सुबह और शाम का अंदाज होने लगे, जब महबूब की आंखों में ही पूरी कायनात नजर आने लगे, तो फिर दुनिया में बाकी क्या बचता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म चिराग के उस सदाबहार गीत की, जिसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे हैं और जिसे अपनी रूहानी आवाज से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने सजाया है। आइए हम चलते हैं उसी खूबसूरत दौर में और सुनते हैं

जब गीत और आँखों का मिलन होता है तो भावनाएं शब्दों से कहीं आगे निकल जाती हैं। यह वो मौन संवाद होता है जहां दिल की बात बिना कहे बयां हो जाती है। संगीत हमारी भावनाओं को एक आवरण देता है। वही आंखें जो शायद सामान्य समय में कुछ छिपा रही हो, एक प्यारे गीत या धुन के सहारे अपने सारे राज खोल देती है। इस संगम में गीत माध्यम बनता है और आंखें सच्चाई। यह एक ऐसा पल होता है जहां दो धड़कनें एक साथ लय में आ जाती है।

जब आंखों में समंदर की गहराई हो और लबों पर प्यार की मुस्कान, तो दिल धड़कना लाजमी है। चलिए हम सब मिलकर खो जाते हैं 80 दशक के इस जादुई और बेहद रोमानी गीत में, जिसे सुनकर आज भी हर दिल मचल उठता है।

सच में इस गीत को सुनकर ऐसा लगा जैसे सागर की लहरें सीधे हमारे दिल को छूकर गुजर गई। किशोर कुमार की जादुई आवाज और गीत के बोल आज भी जवां हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं गीतों के रंग। नब्बे के दशक की फिल्म रंग का सदाबहार गाना तुम्हें देखे मेरी आंखें, जिसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है, एक बेहद प्यारा और रोमांटिक गीत है। दिल की धड़कनों को सुनने के लिए कानों की नहीं बल्कि एक सच्चे एहसास की जरूरत होती है, और जब वो एहसास आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए तो हर धड़कन सिर्फ एक ही तराना गाती है, तुम्हें देखे मेरी आंखें।

जब एक खूबसूरत निगाहें आपको देखती हैं तो फिजाओं में रंग घुलने लगता है, मगर कभी कभी ये जादू दिल को उम्मीदों से भर देता है और एक मीठा सा डर भी लगता है। आइए सुनते हैं 90 के दशक का एक ऐसा बेहद रोमांटिक

दस्तक फिल्म के इस गीत के साथ ही घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि आप श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चुका है। तो अपने रेडियो मित्र भवेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों के रंग, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।

0: नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।